श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 मई 2026 इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को

0: लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। विचार मंथन। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। ऐसा कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अब प्रस्तुत है वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। चिंतन में सुनिए श्री वासुदेव शास्त्री का लेख, वाचन है माधवी एंडे का।
1: परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ हर जड़ चेतन में बदलाव होता रहता है। हम एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। रचनात्मक सोच रखने वाले ही समय की कीमत पहचानते हैं और वे अपनी सोच को ऐसा मूर्त रूप देते हैं जिससे नए नए आविष्कारों का जन्म होता है। व्यर्थ की बातें करना, आलस से प्रमाद करना, हंसी दिल लगी करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में यदि समय लगता तो समझ लीजिए कि

परंतु इस योग्यता को वो काम में नहीं ले रहा, बल्कि पशु पक्षियों की तरह अपने समय को ज्यादातर बर्बाद कर रहा है। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमेशा गंभीरता से विचार करें, क्योंकि हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। अभी जो समय मिला है वो बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अच्छे से अच्छे काम में लगाने के लिए मिला है। रचनात्मक क्रिया शक्ति हमारे सामाजिक आर्थिक सभी पहलुओं को दृढ़ता प्रदान करती है। नवीन कार्यों को करते समय हमें उसके परिणाम को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि उस कार्य से हम किसी का भी भला कर सकें तो ये बहुत मूल्यवान बात होगी। समय को जीवन की पूंजी बनाएं तो तरक्की के दरवाजे अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। हम अपने हर कार्य का सिंहावलोकन करें और उसमें होने वाली गलतियों को सुधारते रहें, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप सफलता के पर्याय बन जाएंगे। समय मनुष्य के जीवन की ऐसी पूंजी है जो खर्च होने के बाद वापस नहीं मिलती है। अगर हमने समय को पहचान लिया तो सफलता ज्यादा दूर नहीं रहेगी।

चिंतन में अभी आप सुन रहे थे श्री वासुदेव शास्त्री का आलेख, वाचन माधवी इंडे का था। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गान, गायक स्वर रंजना जोगलेकर का।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गान, गायक सर रंजना जोगलेकर का था। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 6:45 हुए हैं। कृषि सामयिकी में सुनिए जायद मूंग के लिए विशेष सलाह संबंधी जानकारी।
1: किसान भाई बहनों, जो भी हमारे किसान बहन भाई मूंग की खेती कर रहे हैं, वो इन बातों का ध्यान रखें कि मूंग की खेती में रसायनों का अत्यधिक उपयोग ना केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि जो व्यक्ति मूंग की दाल का उपयोग करेगा, यानी कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। अभी अभी जो मूंग की खेती जिन किसान बहन भाइयों ने जायद में की है, उसमें ऐसा देखा गया है कि मूंग को जल्दी सुखाने के लिए खरपतवार नाशी पैराकॉट और ग्लाइफोसेट का उपयोग किया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव वातावरण और मूंग का सेवन करने वाले आम जन पर पड़ रहा है। इससे विभिन्न प्रकार के रोग और विकृति बढ़ने की संभावनाएं हो रही हैं। हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने सुझाव दिया है कि आप सभी को खेती के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। ग्रीष्मकालीन जो मूंग हम ले रहे हैं, इसमें कीटनाशक और खरपतवार नाशी का उपयोग ना के बराबर करें। इससे ना केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, बल्कि हमारे और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूंग की खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करें। प्राकृतिक रूप से पकने वाली मूंग में खरपतवार नाशक का उपयोग बिल्कुल ना करें। अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाएं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करें। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है। फसल चक्र को अपनाकर और अंतः फसल प्रणाली का उपयोग करके आप खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार रासायनिक कीटनाशकों को दूर रखने के लिए आप जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए पीला चिपचिपा ट्रैप लगाकर पीला विषाणु रोगग्रस्त पौधों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी अंतर्वर्ती फसलों की बात की, तो इससे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण होता है। एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में ना लगाएं। फसल चक्र को अपनाकर खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए फसल प्रणाली जैसे अरहर के साथ ज्वार और मूंग की फसल, इनको लगाकर भी खरपतवारों कम कर सकते हैं। इसके अलावा और अच्छे तरीके आपको बता रहे हैं जो प्राकृतिक हैं मूंग में खरपतवार नियंत्रण के लिए। इसमें शुद्ध बीजों का प्रयोग करके और गहरी जुताई करके भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। हाथ के द्वारा निराई गुड़ाई करें। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि हाथ के द्वारा निराई गुड़ाई कर सकते हैं, तो ये सरल भी रहता है और फसल की जो क्रांतिक अवस्था होती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वहाँ पर ये प्रभावी सिद्ध होगा। फसल चक्र को अपनाएं और अंत में फसल प्रणाली का उपयोग करके खरपतवारों को नियंत्रित आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरकल्चर अभ्यास हाथ, बैल या ट्रैक्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ भी आप कर सकते हैं। मूंग में सफ़ेद मक्खी, माहू, सेमी लूपर, तंबाकू की इल्ली, बिहार कंबलिया कीट और फली छेदक लगते हैं, तो इनके लिए जैविक कीटनाशक जो आता है बेवेरिया बेसियाना और वर्टिसेलियम लेकेनी, इनका उपयोग करके कीटों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। फिर फेरोमोन ट्रैप की बात हम अक्सर किया करते हैं, इनको आपको 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाकर कीट का प्रकोप समझ के उसको कम कर सकते हैं। अंडे और इल्लियों के समूह को इकट्ठा करके नष्ट करें। 40 से 50 खूंटियां जो कि 3 से 5 फीट ऊंची हो, इनको आप प्रति हेक्टेयर लगाएं, ताकि इस पर पक्षियों के बैठने के लिए स्थान बन सके और पक्षी कीटों को खा सकें। फसल की शुरुआत में ही इन खूंटियों को लगा दें। निरंतर फसल की निगरानी करते रहें। कीट की संख्या यदि आर्थिक क्षति से ऊपर पहुंचती है, तब हम सिफारिश करेंगे कि आप कीटनाशक का छिड़काव करें। जैविक कीटनाशक बेवेरिया बेसियाना 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग आप कर सकते हैं। पीले विषाणु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला दें। पीले चिपचिपे ट्रैप का उपयोग जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था करें, चाहे तो इन्हें घर पर ही आप बना सकते हैं। टीन की या प्लेट या चादर में पीले रंग का पेंट करके उसमें ग्रीस या सरसों का तेल लगाकर इनको आप लगा सकते हैं। इन्हें प्रति एकड़ 20 से 25 ट्रैप लगाना होगा। जैविक कीटनाशी वर्टिसेलियम लेकेनी का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। जैविक मूंग के लिए एक एकड़ में 10 से 12 किलो बीज बोने पर 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिलता है। और जो आपने रासायनिक दवाओं से मूंग की फसल ली है उससे लगभग 30% इसका दाम भी अधिक मिलता है।
0: कृषि सामिकी में अभी आप सुन रहे थे जायद मूंग के लिए विशेष सलाह, जानकारी दे रहे थे विपिन कुमार यादव। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

गुड मॉर्निंग। जबलपुर का समय होगा 7:20 का। इसमें आज आप सुनिएगा कलाम शायर के अंतर्गत अब्दुल जब्बार निश्तर जबलपुरी को। फिल्म संगीत का प्रसारण 8:30, 9:00 लोक रसधार में कलाकार रजनी अर्जरिया रघुवर दास अहिरवाल। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा 9:30। वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी 10:05 पर। विश्व दर्पण होगा 10:10 पर। सारंगा 10:20 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम 11:00 से युववाणी सुनिएगा 5:02 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा 6:00। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार प्रीतम सिंह ठाकुर 6:30। सुगम संगीत में गायिका होंगी सुनीति माहेश्वरी। 6:45 का समय होगा। 7:21 पर कृषि के अंतर्गत डॉक्टर राजकुमार पटेल से की गई बातचीत का विषय होगा कृषक उत्पादक संगठन। सुर्खियों में 8:00 फिल्म संगीत, 8:15 स्पॉटलाइट, 9:15 चर्चा का विषय है, 9:30।

चर्चा का विषय है 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जसराज का गायन, 10 बजे मनभावन होगा, 10:30 बजे कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 6:55 होना चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसिलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the subdivisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnetra Kadagam, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Idappadi Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. A high-level Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will visit Bhutan from today with the main objective of further strengthening India-Bhutan relations.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान नहीं होगी वाहन रैली, कारकेड भी छोटा रहेगा। आज प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 1,835 करोड़ रुपए। प्रदेश में 1,84,00,000 से अधिक मकानों की गणना पूर्ण और प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी। आज 12 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर लिया है। राज्य शासन द्वारा कल जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन की बचत और सादगी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है, साथ ही आम लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, ना ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और यह सुनिश्चित किया है कि जनता

0: पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और कुल नुकसान करीब 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
1: एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36 हजार से बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल फ्रांस के राजदूत थियरी माथू सहित इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस की ओर से अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनियों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित 8 अभिरुचि पत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किए गए। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनंतिम अनुमानों और चौथी तिमाही के जीडीपी के त्रैमासिक अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान 12 मई से 21 जून तक प्रदेश भर में संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल आयुष विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
2: शरीर में योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर योग अपनाने के लिए घर घर योग, योग शिक्षक, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल प्रदेश भर में लगने वाले हैं। इस दृष्टि से योग सखी, योग दूत इत्यादि प्रकार के कई समूह बना करके इस पे काम करने का निर्णय किया है। उससे आगामी 21 जून तक ये अभियान चला करके योग से बाकी कई सारे लोगों को जोड़ने का ये अभियान चल रहा है।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: कि आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को महत्व देना पड़ेगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य जारी है। इस अभियान में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार एवं अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। सचिव गृह विभाग और नोडल अधिकारी जनगणना शिल्पा गुप्ता ने बताया कि राज्य में जनगणना कार्य के लिए 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें प्रगणकों द्वारा व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। 12 मई तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,84,92,860 मकानों की गणना पूर्ण की जा चुकी है। रायसेन जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना

का फील्ड कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खाते में 1,835,67,00,000 रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी। इसमें अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में 55,926 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर ई रमेश कुमार ने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की कल समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता केजीपी 12 के 4 शावक कल सुबह एक मांद के पास मृत पाए गए हैं। शावकों का जन्म 11 अप्रैल को खुले जंगल में हुआ था। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में है। कुनो में मौजूद अन्य सभी चीते भी स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम केंद्र ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल कई जिले लू की चपेट में रहे, वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर और झाबुआ सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज रीवा में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक और रचनात्मक अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले के शहपुरा में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। सम्मेलन में 200 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। शासकीय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पब्लिक विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर छोटी बेटमा इंदौर में खेल विधाओं के लिए 200 सीटें स्वीकृत की गई हैं। इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया, शारीरिक परीक्षण एवं बैटरी टेस्ट 15 जून तक क्रीड़ा परिसर में होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

सूचना शिक्षा मनोरंजन का शब्दों का सिनेमा आकाशवाणी। जी हाँ श्रोताओं, हम 90 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 1936 में हमारे आकाशवाणी की शुरुआत हुई और आज हम

90वां वर्ष मना रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का एहसास कराती आकाशवाणी आपके लिए नित नए कार्यक्रमों को लाती है। समय पर जानकारियां दी जाती हैं, भेंट वार्ताएं सुनवाई जाती हैं, कविता पाठ सुनाया जाता है, कहानियों से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, हम इस समय 90 वर्ष मना रहे हैं।

0: श्रोताओं, अब करते हैं विषयांतर और आपको सुनवाते हैं कलाम शायर में अब्दुल जब्बार निश्तर जबलपुरी को।
1: खुदा को राजी करने की सही मालूम होती है, तुम्हारी बंदगी तो बंदगी मालूम होती है। खुदा को राजी करने की सही मालूम होती है, तुम्हारी बंदगी तो बंदगी मालूम होती है। और तुम्हारे हिस्से में है रोशनी मालूम होती है, तुम्हारे हिस्से में है रोशनी मालूम होती है। इरादों में तुम्हारे पुख्तगी मालूम होती है, इरादों में तुम्हारे पुख्तगी मालूम होती है। और सफ़र दुश्वार था तन्हा जहाँ से हम सफ़र तुम हो, सफ़र दुश्वार था तन्हा जहाँ से हम सफ़र तुम हो, वहीं से ज़िंदगी भी ज़िंदगी मालूम होती है, वहीं से ज़िंदगी भी ज़िंदगी मालूम होती है। कराहा है किसी ने या किसी के दिल पे गुजरी है, कराहा है किसी ने या किसी के दिल पे गुजरी है। हमारे दिल में उठती हूक सी मालूम होती है, हमारे दिल में उठती हूक सी मालूम होती है। हरारत है मोहब्बत की या फिर है कुछ परेशानी, हरारत है मोहब्बत की या फिर है कुछ परेशानी। तुम्हारे चेहरे पे शबनम जमी मालूम होती है, तुम्हारे चेहरे पे शबनम जमी मालूम होती है। मोहब्बत की नहीं तुमने किसी से लगता है शायद, मोहब्बत की नहीं तुमने किसी से लगता है शायद। तुम्हारी शायरी में ये कमी मालूम होती है, तुम्हारी शायरी में ये कमी मालूम होती है। ज़माने के सताए हो बड़े मगमूम बैठे हो, ज़माने के सताए हो बड़े मगमूम बैठे हो। तुम्हारी दर्द से वाबस्तगी मालूम होती है, तुम्हारी दर्द से वाबस्तगी मालूम होती है। है कहना सच को सच लाजिम, गलत है तो गलत कह दो, है कहना सच को सच लाजिम, गलत है तो गलत कह दो। ज़बाँ खोलो नहीं तो बुज़दिली मालूम होती है, ज़बाँ खोलो नहीं तो बुज़दिली मालूम होती है। और तुम्हारा लहजा है कड़वा कलामी सख्त करते हो, तुम्हारा लहजा है कड़वा कलामी सख्त करते हो। तुम्हारी गुफ्तगू से बरहमी मालूम होती है, तुम्हारी गुफ्तगू से बरहमी मालूम होती है। और कहा दिलबर ने मुझसे के मेरा सब कुछ तुम्हारा है, कहा दिलबर ने मुझसे के मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरे हमदम की ये दरिया दिली मालूम होती है, मेरे हमदम की ये दरिया दिली मालूम होती है। न वो अब टूट कर मिलना न पहले सी रिफाकत है, न वो अब टूट कर मिलना न पहले सी रिफाकत है। मेरे मोहसिन यूं चाहत में कमी मालूम होती है, मेरे मोहसिन यूं चाहत में कमी मालूम होती है। और तजमीन समाप्त फरमाएं, अभी मंजिल हमारी हमसे कोसों दूर है लेकिन, अभी मंजिल हमारी हमसे कोसों दूर है लेकिन, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। अरे बैठो मियाँ निस्तर है तुमसे जीनते महफिल, अरे बैठो मियाँ निस्तर है तुमसे जीनते महफिल। चले जाते हो महफिल से कमी मालूम होती है, चले जाते हो महफिल से कमी मालूम होती है। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाएं। कल तलक पत्थर से लेकिन आज गौहर हो गए, कल तलक पत्थर से लेकिन आज गौहर हो गए। आईने से तरबियत ली और जौहर हो गए, आईने से तरबियत ली और जौहर हो गए। बस ज़रा सा क्या असर उनकी ज़बाँ में आ गया, बस ज़रा सा क्या असर उनकी ज़बाँ में आ गया। वो समझ बैठे कि हम सूफ़ी कलंदर हो गए, वो समझ बैठे कि हम सूफ़ी कलंदर हो गए। एक ज़रा सा आ गया क्या

0: संत राशि का हुनर, एक जरा सा आ गया क्या संत राशि का हुनर, आ गए जद में अना की लोग हाजर हो गए, आ गए जद में अना की लोग हाजर हो गए, तीर गिए शब से लड़ने का हुनर जिनको न था, तीर गिए शब से लड़ने का हुनर जिनको न था, चीर कर सुबह कसीना वो भी सफदर हो गए, चीर कर सुबह कसीना वो भी सफदर हो गए, मेरी अदबारी पे शादा जो नज़र आए बहुत, मेरी अदबारी पे शादा जो नज़र आए बहुत, मेरे भाई भी तो यूसुफ के बरादर हो गए, मेरे भाई भी तो यूसुफ के बरादर हो गए, सरफराजी क्या ज़रा सी रब ने की उनको अता, सरफराजी क्या ज़रा सी रब ने की उनको अता, ज़ोमे उस्तादी में आकर लोग खुद सर हो गए, ज़ोमे उस्तादी में आकर लोग खुद सर हो गए, कर लिया तस्लीम हमने दोस्त अपना इसलिए, कर लिया तस्लीम हमने दोस्त अपना इसलिए, अब मेरे बच्चे मेरे कद के बराबर हो गए, अब मेरे बच्चे मेरे कद के बराबर हो गए, आपकी चश्मे करम जब से हुई हम पे हुजूर, आपकी चश्मे करम जब से हुई हम पे हुजूर, कूजे से दरिया हुए दरिया से सागर हो गए, कूजे से दरिया हुए दरिया से सागर हो गए, अपनी मेहनत पर हमें फिर फख्र क्यों ना हो नदीम, अपनी मेहनत पर हमें फिर फख्र क्यों ना हो नदीम, हमने जो पौधे लगाए थे तनावर हो गए, हमने जो पौधे लगाए थे तनावर हो गए, और आफरी सद आफरी हमको कहा लोगों ने जब, आफरी सद आफरी हमको कहा लोगों ने जब, तब लगा हमको कि अब हम भी कदावर हो गए, तब लगा हमको कि अब हम भी कदावर हो गए, किस कदर हमको निखारा काविश उस्ताद ने, किस कदर हमको निखारा काविश उस्ताद ने, हम बदौलत कैफ की निस्तर सुखनवर हो गए, हम बदौलत कैफ की निस्तर सुखनवर हो गए। गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। अब तेरी याद के सैलाब नहीं आते हैं, अब तेरी याद के सैलाब नहीं आते हैं, नींद आती है मगर ख्वाब नहीं आते हैं, नींद आती है मगर ख्वाब नहीं आते हैं, बात जो कहनी हो कह देते हैं बेबाकी से, बात जो कहनी हो कह देते हैं बेबाकी से, मसलहत कोशी के आदाब नहीं आते हैं, मसलहत कोशी के आदाब नहीं आते हैं, और एक जारों की मसाफत है तो ये ध्यान रहे, एक जारों की मसाफत है तो ये ध्यान रहे, रास्ते में नदी तालाब नहीं आते हैं, और सिर्फ़ पानी को सऊबत का सफ़र मत समझो, सिर्फ पानी को सऊबत का सफ़र मत समझो, रेगजारों से क्या सैलाब नहीं आते हैं, रेगजारों से क्या सैलाब नहीं आते हैं, जिनको कुदरत ने नवाजा वही अफराज हुए, जिनको कुदरत ने नवाजा वही अफराज हुए, बन के सब गौहरे नायाब नहीं आते हैं, बन के सब गौहरे नायाब नहीं आते हैं, हक बयानी जो करोगे तो बनोगे सुकरात, हक बयानी जो करोगे तो बनोगे सुकरात, सबके हिस्से में ये जहराब नहीं आते हैं, सबके हिस्से में ये जहराब नहीं आते हैं। और मकतब समाप्त फरमाएं, मात जब अपने मुकद्दर में लिखी हो निस्तर, मात जब अपने मुकद्दर में लिखी हो निस्तर, मोहरे होते हुए एहराब नहीं आते हैं, मोहरे होते हुए एहराब नहीं आते हैं।
1: कलामी शायर में अभी आप सुन रहे थे अब्दुल जब्बार निस्तर जबलपुरी को। अब करते हैं विषांतर और सुनवाते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 8 बजना चाहते हैं, वक्त है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव

0: प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही

0: के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, 1 गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि

0: हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secrecy to Mr. Rangaswamy.

अमीन साबरी, जसविंदर नरूला और साथियों को सुनते हैं फिल्म सिर्फ तुमसे।

आप सुन रहे थे डॉक्टर कमलेश अवस्थी और साथियों को फिल्म नसीब से। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

0: रहे हैं भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 8:58 हुए हैं। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्रियों और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी है। मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है, साथ ही आम लोगों से भी अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी।

0: हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835,67,00,000 रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हरा कर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का दूसरा भाग। श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रिश्तों की, रिश्ते जी हाँ, इंसानी जिंदगी में जो रिश्ते होते हैं बड़ी अहमियत रखते हैं। रिश्ते केवल खून के नहीं बल्कि मोहब्बत, अपनेपन और एहसास से भी बनते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि माँ बाप का साया, भाई बहन का प्यार, दोस्तों की वफादारी और जीवन साथी का भरोसा इंसान की ज़िंदगी को खुशनुमा बना देता है। और एक रिश्ता विश्वास और एहतराम की बुनियाद पर टिका होता है। हर रिश्ता जहाँ दिलों में सच्चाई और खुलूस होता है, जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं, छोटी छोटी बातें, नरम लहजा और एक दूसरे की फिक्र रिश्तों में मिठास पैदा कर देती है और यही रिश्तों को मजबूत बनाती है।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोक रसधार इस कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनिए रजनी अर्जरिया के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक रसधार में अभी आप सुन रहे थे रघुवर दास अहिरवार और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 9:30 हुए हैं। फिल्म संगीत।

प्रारंभ में सुनिए अनोखी अदा से किशोर कुमार को शब्दकार है मजरूह।

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में यह हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा यह हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा है। द बर्निंग ट्रेन से सुनिए आशा भोसले और साथियों को।

0: फिर प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर नवनीत चौबे। अनूपपुर जिले में मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गजरक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकट राव चनाप ने बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और उनके जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, यह ऐप वनकर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को SMS, वॉयस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में मई माह में 2400 घंटे सुमन हेल्प डेस्क एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हर समय त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में घर घर जनगणना कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जनजातीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। जिले में गेहूं की खरीदी जारी है। जिले में 15 अप्रैल से शुरू हुई उपार्जन प्रक्रिया के तहत अब तक 355 किसानों से 971 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए कुल 1367 किसानों ने पंजीयन कराया है। अनूपपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विशेष सुनवाई शिविर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, एरियर एवं GPF भुगतान जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान विशेष रूप से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित भुगतान प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकास खंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया कला के प्रगतिशील किसान तारन सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई, जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12,000 से 15,000 रुपए तक का खर्च आता था। वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1,200 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के नव निर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने ICU कक्ष, नेत्र कक्ष, बेड की उपलब्धता एवं चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिले के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अनूपपुर में 3 मतदान केंद्र और कोतमा व राजेंद्रग्राम में 1-1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों में से मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के 22 सदस्यों का चुनाव किया। अनूपपुर जिला न्यायालय में 302 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ संतोष सिंह परिहार ने बताया कि मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। विगत दिनों जिले के क्षत्रिय समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोतमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज ने जयथरी अनूपपुर अमरकंटक में शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर नवनीत चौबे का। मीडियम वेब DTH का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी।

मानो मन में भावनाओं का तूफान श्वास दर श्वास आता है। इसका वेग बहुआयामी और बहुमुखी होता है। कभी अपने साथ किसी अज्ञात लोक में नंदनानंद परागमय गंध से आता है, तो कभी लोकोत्तर सौंदर्य में अनूठे बिंबों का संसार खड़ा कर देता है। रूप रस गंध के मादक रोमानी तिलस्मी सृजन के बीच जब मन देश जाति और आत्मगौरव की ओर रुझान रूपायित करता है, तो समर्पण त्याग और शहीदी तेवर मुखी होने लगते हैं। आज जब देश को तोड़ने फोड़ने के क्रम चल रहे हैं, एकता को चरमराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है सांप्रदायिक सद्भावना की।

वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:10 होना चाहते हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की

0: विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने समरथ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में यूवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक से पहले डॉ. जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरा वियेरा के साथ भी वे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ. जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 2033 तक के लिए नया 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, लोगों की क्षमता मजबूत करना और देश भर में टिकाऊ आजीविका के अवसरों का विस्तार करना है। इस अवसर पर आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि भारत और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की साझेदारी केवल लंबे समय से ही नहीं बल्कि रणनीतिक तालमेल के लिए भी जानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे कल से पेचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार पर विशेष बल दिए जाने की संभावना है। ये शी जिनफिंग के साथ ट्रंप की 7वीं आमने सामने की बातचीत होगी और 2017 के बाद किसी अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा से पहले ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इससे आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग और आपसी हितों के समर्थन में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में नवीनतम घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर गंभीर प्रभावों के साथ साथ उनसे निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। उधर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कतर ने कल ईरान के

इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध एक सशस्त्र समूह की बिबुयान द्वीप में घुसपैठ की निंदा की। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर अप्रैल में पिछले 3 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध से उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 3.8% हो गया, जबकि मार्च में ये 3.3% था। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में हिंसा बढ़ गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी प्रभावित हुए हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य लगभग बाधित हो गया है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी जलमार्ग से गुजरता है। इस रुकावट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने समृद्ध अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समृद्ध दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है और इसकी क्षमता सोवियत दौर की वोयोमोदा मिसाइल प्रणाली के बराबर है। श्री पुतिन ने कहा कि समृद्ध मिसाइल प्रणाली को इस वर्ष के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। रूस की सामरिक मिसाइल सेना के कमांडर सर्गेई काराकाइव ने कहा है कि परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की क्षमता और उसकी की मजबूती को साबित किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में लिए ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 वर्ष से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में शपथ ली। चुनावों में मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए थे। वहीं विपक्षी नेता बॉबी वाइन को 25% वोट मिले। ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री की स्टामर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके मंत्रिमंडल में आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहुनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टामर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया। उधर श्री स्टामर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टामक से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है और श्री स्टामक का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर रेखांकित होते हैं। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नज़र से देख रहे थे और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल और भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को नेपाल के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। नेपाल के विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने सदन में ये समझौता प्रस्तुत किया। ये समझौता इस वर्ष फरवरी में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। श्री गौतम ने कहा कि समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक प्रभावी और आसान बनाना है। पश्चिमी और दक्षिणी श्रीलंका में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने द्वीप के पास बने निम्न दबाव से मौसम बिगड़ने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को पश्चिमी और सबरागुमा प्रांत में 200 किलोमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में आज से भारतीय दल सिंगल्स वर्ग के मुकाबले खेलेगा। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग के साथ खेलेंगी। वहीं देविका सिहा का सामना जापान की खिलाड़ी से होगा। तारा शर्मा का मुकाबला जापान की हीना केची और ईशारानी बरुआ का मुकाबला इंडोनेशिया की थालिया रोसियाना वरियानवान से होगा। भारत ने थाईलैंड में आयोजित BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 सदस्यीय दल भेजा है। उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के

0: मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:20 हुए हैं। वक्त है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा का। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। पहला गाना सुनिए बागवां फिल्म से, अमिताभ बच्चन ऋचा शर्मा की आवाज़ों में। शब्द संगीत आदि श्रीवास्तव का सुनना चाह रहे हैं। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, सनप्रीत, हेमंत सनमति। मंडला से सिया शरण ज्योतिषी और इनके परिवार के सदस्य। जवाहरगंज से जिनेन्द्र कुमार जैन और इनकी मित्रमंडली। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। विश्वविद्यालय रोड से सागर से चंद्रेश गौहर और इनकी मित्रमंडली।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

इनाम इना डिका से सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को फरमाइश आप सबकी है। अमलेश्वर महादेव घाट से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, रियांश, चांद, मोहम्मद, कल्पा, सतना से सुनाचार्य, इनका पूरा परिवार इसी गीत को। लोनी से परवीन डोम, कुमारी वली डोम, मथुरा से वसीम आसमा, अक्रम आसमा, उल्लाह आसमा इनके परिवार के सदस्य, किशनपुर से शबाना नाज, रिजवान राही और इनके परिवार के सदस्य।

छत्रपति संभाजीनगर से राजेश पाटिल, राजदीप राशि, श्रीमती शीतल, छत्तीसगढ़ से दिलीप कुमार चंदन, पुणे से मीनाक्षी रजनी कार्तिक, इनके परिवार के सदस्य आप सभी सुनना चाह रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर, नितिन मुकेश को फिल्म क्रांति से।

नाम फिल्म से अभी आप सुन रहे हैं पंकज उदास को। फरमाइश है बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक प्रांजल इनके परिवार के सदस्य, नागपुर से वैशाली शैलेश ध्वनि कवाड़कर परी, मुंबई से सिद्धांत और इनके परिवार के सदस्य, उमरखेड़ से सरिता अभिजीत, भाटापारा से गन्नूलाल रजक, की आर साहू अश्विनी और इनके परिवार के सदस्य, पंजाब से हरदेव मीका विरक, खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा इनके परिवार के सदस्य, खरगोन से ध्रुववास सोनावड़े, सुनीता खुशी, प्रियांश इनके परिवार के सदस्यों की।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत पंडित गिरिराज जी का सितार पर बजाया राग वसंत मुखारी। मीडिया वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में शासकीय कार्यों में मितव्ययता के उपायों पर अमल करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और दिए गए सुझावों के अनुरूप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रीगण सहित निगम मंडल के पदाधिकारी और आम नागरिक अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग न करें। प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया है जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। सरकार ने इस बार गेहूँ खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन रखा है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। गेहूं खरीदी 23 मई तक जारी रहेगी और शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं छाया पाठक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारे फोन नंबर है 2660902। हमें आपके फोन कॉल्स का हमेशा इंतजार रहता है। बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
3: हेलो।
2: हेलो।
3: हाँ जी,
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: जी हाँ, मैं रजनी बोल रही हूँ भिंड जिले से।
2: बताएं वहाँ पर क्या हाल चाल है भिंड के?
3: बढ़िया है।
2: आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, क्या सुनना चाहेंगी?
3: आप एक काम करिए, मुझे सिंगे गीत सुना दीजिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
2: अच्छा, ये वाला गीत सुनना चाहेंगी ताकि थोड़ी सी ठंडक आपके
3: नहाते में गाना की याद भी आ जाती
2: जी। चलिए,
3: मतलब हमेशा का सदाबहार गीत है।
2: सदाबहार गीत है, हाँ सही बात आपने कही। चलिए,
3: तो मिल जाएगा कि फिल्म का नाम बताना पड़ेगा?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सदाबहार गीत आपने पसंद किया है,

0: हेलो।
1: हेलो मैडम, सीपरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार
1: जी मैडम।
0: क्या करते हैं वहां पर, खेती किसानी?
1: जी मैडम, खेती करते हैं और आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, रेडियो भी सुन लेते हैं जी। बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं आपके जी।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: यह बात आपकी गीत हमारे फोन करे गीत सुने।
0: तो
1: और
0: आप फोन अक्सर लगाते रहते हैं क्या?
1: जी मैडम, 15-20 दिन में लगाते ही रहते हैं।
0: जी
1: और मैडम बढ़िया हो आप।
0: जी सब बढ़िया है। हम
1: सावन भादो फिल्म का सुनवा दीजिए, मेरे नैना सावन भादो।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं छोटू चक्रधारी बोल रहा हूँ, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। यहाँ
0: बिलासपुर में क्या करते हैं आप?
1: हमारा सिलाई से जुड़ा काम है, इसी में लगे रहते हैं। सिलाई
0: काहे से जुड़ा काम है?
1: सिलाई
0: सिलाई से जुड़ा काम है। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत

0: ठीक नहीं है जी।
1: यार, घर में ना अंदर में टावर नहीं आता, इसलिए होगा।
0: अच्छा, क्या सुनना
1: हाँ,
0: चाहेंगे आज?
1: आज
0: हाँ
1: हमको सुना दो, तलाश फिल्म का गाना,
0: कौन सा?
1: नई वाला तलाश, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी गाने
0: गाना, गाने के बोल तो बताएं।
1: को है। जिंदगी के सफर में ऐसे तक कुछ गाना है, पाना है क्या और खोना है क्या, जिंदगी के जुए में पाना है क्या और खोना है क्या, ऐसे तक था गाना।
0: पाना है क्या, खोना है क्या। चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, हम ग्राम पर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।

0: संगीता पटेल छतरपुर से,
1: जी
0: क्या हाल है छतरपुर के?
1: अच्छे हैं मैम। कभी बादल होते हैं, कभी धूप निकलती है। जी
0: तो आप छतरपुर में ही रहती हैं या आसपास किसी गांव में?
1: नहीं, छतरपुर के पास में महाराजपुर है, उसके पास में है पुर, जी
0: महाराजपुर के पास है पुर,
1: ग्रामपुर।
0: ग्रामपुर।
1: जी
0: तो
1: मैम
0: कुछ बताएं अपने गांव के बारे में, कितना बड़ा गांव है?
1: जी मैम, हमारा गांव वैसे तो गांव ही है, हिसाब से ठीक है, 3-4 हज़ार की आबादी है जी,
0: अच्छा,
1: और खेती किसानी होती है यहाँ पर। जी
0: बताएं क्या सुनाएंगी आज?
1: मैम, फिल्म का नाम तो याद नहीं मैम, और वो गाना के बोल है कि सॉरी दीदी अब ना करेंगे हम तो सॉरी।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं राजेश अग्रवाल, राजाराम नगर, देवास से। जी
0: देवास से बोल रहे हैं
1: जी
0: राजेश अग्रवाल जी। पसंद बताएं क्या सुनेंगे।
1: ये आराधना पिक्चर का गीत है, रूप रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, किशोर दा की आवाज में है।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।

0: करना।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते। कुशवाहा जी, और बताएं अपने बारे में, आपके क्या हाल है?
2: कार्यक्रम आपका सुनता हूँ मैं कंटिन्यू।
1: कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप लगातार?
2: मध्य प्रदेश का कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सुनता हूँ, सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अपने मन पसंद ही अपनी तरह को।
1: साफ सुनाई देता है आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
2: हाँ।
1: अच्छा, तो चले आज हम क्या सुनवा दें आपको?
2: फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
1: कौन सी?
2: मुस्कान फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
2: मुस्कान का जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
1: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं महाशी घर सिनेमा जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: कौन?
1: मैं महाशी घर सिनेमा जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: अभी 6th क्लास में है। हाँ
0: कौन सी क्लास? 5th क्लास में? अच्छा, बहुत छोटे हैं आप तो। फोन आपने लगाया है कि किसी और ने?
1: मेरे बाबा ने लगाया है। हाँ
0: बाबा ने लगाया है। बाबा यानी दादा?
1: हाँ पापा।
0: पापा ने लगाया है। तो आपकी स्कूल की छुट्टियां लग गई?
1: हाँ लगते
0: तो रेडियो सुनते हैं आप?
1: हैं। हाँ सुन लेते हैं कभी कभी।
0: सुन लेते हैं कभी कभी। चलें तो बताएं आज क्या सुनेंगे आप?
1: वो हम साथ साथ पिक्चर का,
0: कौन सा गाना?
1: छोटे भाई होते बड़े।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: सुमत कुमार जैन
1: जी, पिंडरी जिला मंडला जी।
0: जी, क्या करते हैं मंडला में आप?
1: मैं रिटायर्ड टीचर हूँ मैडम।
0: अच्छा, रिटायर टीचर हैं। अच्छा, कहाँ आप मंडला से ही रिटायर हुए?
1: नहीं, पिंडरी मेरा कस्बा है, छोटी बस्ती है पिंडरी,
0: अच्छा, वहाँ से हुए।
1: ब्रजी नगरी है पिंडरी, जैन समाज की, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ मैडम।
0: तो आजकल क्या दिनचर्या है आपकी?
1: दिनचर्या बस यही है कि घर नौकर बन गया हूँ घर का।
0: नौकर बन गए
1: सब्जी लाना
0: जी।
1: और घर के घरेलू कार्य को करना। तो तनख्वाह तो घर में कोई देता नहीं है, सरकार की तनख्वाह मिलती थी। श्रीमती कहती है कि मैंने एक दिन बोला कि नौकर बना लिए यार तुम लोगों ने, तो कहती अब घर का काम नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो मैंने कहा भाई तुम तनख्वाह थोड़ी दे रहे हो।
0: और पत्नी इतने सालों से जो कर रही थी घर का काम, तो आप दे रहे थे क्या उनको तनख्वाह?
1: अरे वेतन लाके सीधा उन्हीं के हाथ में देता था
0: तो
1: मैडम।
0: वेतन कौन सा, वो अपने पे खर्चा कर रही थी है ना,
1: अरे
0: परिवार चला रही थी। ऐसे ही आप भी जो कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं उनका। आप घर का काम मिलजुल कर होता है, अच्छी बात है ना कि आप शासन से रिटायर हो गए। वो तो कभी भी रिटायर नहीं होंगी घर के कामों से, तो आपको
1: वो
0: तो
1: तो गृह
0: सहयोग
1: मंत्री
0: करना
1: है
0: चाहिए,
1: मैडम,
0: आपको समय मिला है।
1: वो तो गृह मंत्री है, जो कहेंगे तो वो करना पड़ेगा
0: करिए सहयोग,
1: जी।
0: ऐसे ही मिलजुल कर काम करने से ही तो परिवार चलता है और प्रेम
1: जी
0: बना
1: जी
0: रहता है, अपनत्व बना रहता है।
1: बहुत सुंदर।
0: बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: रोटी फिल्म का सुना दीजिए, ये पब्लिक है सब जानती है जी। और मैं अपने छोटे कर्म अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम, कि कमला प्रसाद शर्मा सर्रईवाल, कृपाल पटेल।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, चंदमान नाम दे बोल रहा है, ग्राम पोस्ट डेहरी जिला छतरपुर से। फोन करेंगी सुना है कि धनवान
0: फोन पर एक गीत सुनने कार्यक्रम है।
1: फिल्म का सॉन्ग सुना दीजिए,
0: धनवान का कौन सा?
1: ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: नमस्ते मैडम।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह।
1: जी, आपका कार्यक्रम में जुड़ा मैडम। ये लाइव वाला कार्यक्रम है कि रिकॉर्डिंग वाला है?
0: ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा है।
1: जी मैडम, अपने पसंद के गीत भी बताता हूँ। उनका नाम है शहनाज सरदार और गीत के बोल भी हैं शहनाज सरदार, टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग। जी हाँ।

0: फोन करें गीत सुने।
1: ये सर सारी सारी रात तेरी याद सदाए, अजी बस शुक्रिया फिल्म है सर 1958 की।
0: आप अपना नाम तो बताएं पहले।
1: गोविंद जलोदिया, खाते गाँव।
0: खाते गाँव से।
1: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं छाया पाठक।
1: अच्छा, तेरी चक्कर बात हो रही है।
0: सारी सारी रात
1: तेरी याद सदाए,
0: फिल्म का नाम, इसकी फिल्म का नाम बताएं आप।
1: भैया बंद कर दे जरा। हाँ बोलिए।
0: हाँ फिल्म का नाम क्या है इसका?
1: हाँ ये है मतलब अजी बस शुक्रिया।
0: अजी बस शुक्रिया, ये फिल्म का नाम है?
1: हाँ 1958 में पिक्चर आई।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: मैडम, राम सिंह ठाकुर सुहागपुर एमपी से बोल रहे हैं।
0: सुहागपुर एमपी से। अच्छा,
1: जी चाय
0: क्या करते हैं वहाँ?
1: की दुकान है मैडम जी?
0: अच्छा, तो अभी आप दुकान पर बैठे हैं?
1: जी दुकान पर है जी,
0: अच्छा, आपकी पसंद बताएं आज क्या सुनेंगे?
1: जो है नगीना फिल्म का गाना सुन रहा मैडम जी।
0: कौन सा?
1: मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा जी, बहुत
0: अच्छा, तो
1: दिन से लगाने की कोशिश में मैडम जी, मतलब 1 साल के बाद में आज लगा फोन
0: एक साल के बाद?
1: जी। नहीं
0: नहीं, मेरी तो आपसे बात हुई है इससे पहले।
1: नहीं हो पाई मैडम जी, नहीं है,
0: अच्छा
1: आज पहली बार बात हो रही, वो भी काम वालों कैसे धोखे से लग गया, हम तो ट्राई कर रहे थे तो बात
0: धोखे से लग गया।
1: जी, हाँ मतलब लगा रहे थे तो लग गया, वैसा कहने का मतलब जी।
0: चलिए, तो आप अपनी
1: जी
0: ग्राहकी छोड़ के फोन लगा रहे थे? अपनी ग्राहकी छोड़कर फोन लगा रहे थे, ग्राहकों की सेवा
1: जी
0: छोड़ करके?
1: जी जी जी
0: तो और कोई भी आपकी दुकान पे काम करता है साथ में?
1: नहीं, दुकान पे तो हम अकेले ही हैं मैडम जी।
0: तो वहीं पर रेडियो भी सुनते हैं?
1: जी रेडियो तो मैं बहुत दिन से सुनते हैं मैडम जी, कम से कम आज मेरे को होगा तो 20-25 साल होगा जब से सुन रहे हैं रेडियो जी।
0: चले सुने आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: फोन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशकों और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में 18 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम होंगे। इनमें 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनमें भोपाल में किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, आम सभा संबंधी कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को देना आवश्यक होगा। भोपाल में सिटी बसों के लिए 26 नए रूट तय किए गए हैं। सबसे लंबा रूट 68.5 किलोमीटर का सीहोर से रातापानी का तय किया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डिस्को डांसर फिल्म का एक गीत। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है। उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, मधु महाराज, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। रूपा खेड़ी देवास

से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य गंगोड़ी जिला उज्जैन से लिखने वाले हैं गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ मालगाम और लोकेंद्र वर्मा। इसी गाने को पसंद किया है जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बब्बू वर्मा, कालू वर्मा और उनके कालू भैया और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। और ये खत आया है, कहाँ से आया है, इसमें इन्होंने लिखा सिंहपुर बाड़ा से लिखा है राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने ये गाना सुनना चाहा है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शांति नगर उज्जैन से लिखने वाले हैं असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस पलक, अफशां और आयान दुलावत और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को सुनना चाहे, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज में। गाने को पसंद करने वाले हैं नाज मंजिल मेहोल सीतामढ़ी बिहार से, लिखने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम अरहान बाबू हमजा बाबू मुजम्मिल बाबू हुमेरा सुमेरा अबीहा शाहीन नाज नूरी नाज बच्चू शेख और चीना शेख। इसी गाने को पसंद किया है कोकिलवारा से ओराई ज़िला मुजफ्फरनगर से, लिखने वाले हैं मोहम्मद फैसल शेख नुसरत जहां नाज शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाहनवाज परवेज़ मसरत जहां नाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विद्यानगर तेंदुखेड़ा ज़िला दमोह से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश नेमा किरण नेमा आकाश नेमा विकास नंदिनी शिवाश और समस्त नेमा परिवार। सुनते हैं ये गाना, आवाज़ किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है परिचय। गुलजार ने इस गाने को लिखा है और राहुल बर्मन का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आरजू से, आवाज मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गाने को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, पटेल नगर मलोड पंजाब से लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राहे, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से लिखने वाले हैं शैलेश गायकवाड़, वैशाली श्वेता सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नमक हलाल से, आवाज़ आशा भोसले की है। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशी राजेश, शीतल राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राव, उषा राव, अमित कुमार राव, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

अगले गाना लिया है हमने फिल्म जानवर से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जी के शंकर संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के सदस्य। अगला गाना इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छोटी बलिया करजन मुंबई से लिखने वाले हैं अहमद भाई फूल वाले, इकबाल भाई फूल वाले, नूरेशा बेगम फूल वाले और कॉपस हैदा नई दिल्ली से लिखने वाले हैं नसरीन आज़ाद, आमना अस्मा परी और इमरान अहमद और दूसरे साथी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गांधी बाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर, सरोज चौक अमरावती से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा बेगम, हादिया खान, असमा सालिहा और शोएब खान। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जावाज से, आवाज़ें हैं मनहर उदास और साधना सरकम की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट से, लिखने वाले हैं रमेश कुमार जाजोरिया और ये पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से लिखने वाले मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गुड़, मोहम्मद शादाब खत्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। ये खत आया है, इसमें लिखाई थोड़ी साफ नहीं है, जितने नाम मुझे समझ में आ रहे हैं अनिल, नेहा, सीमा, सबीहा, फजल, सुषमा और बाकी के नाम मुझे इसमें समझ में पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो ये पत्र आया है गुमाश्ता नगर स्कीम 71 से। तो आपसे निवेदन है कि अगली बार जब भी आप खत लिखें तो थोड़ा संभल कर शब्दों को थोड़ा ऐसा लिखें कि हमें पढ़ने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं और ये समय है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी सुनने के। तो लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को।

0: जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 13वीं यानी अंतिम कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आत्मा राम का नाट्य रूपांतरण। वैदिक ग्राम में महादेव सुनार एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। सुबह से शाम तक वो अपनी अंगीठी के सामने बैठा खटखट किया करता। आस पड़ोस के लोग इस आवाज के अभ्यस्त हो चुके थे। महादेव के परिवार में पुत्र, बहुएं, पौत्र सभी लोग थे, परंतु उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। ऐसा उसके व्यावसायिक जीवन के बारे में भी कहा जा सकता है। वो भी तनावग्रस्त ही था। काम तो सबसे खरा करता था, फिर भी आए दिन लोगों की खरी खोटी सुनता था। ले देकर उसका अगर कोई था तो वो था एक तोता। उससे वो बड़ा ही प्रेम करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वो उसका पिंजरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता था।
1: अजी उठो जी, भोर हो गई है। अरे उठो, महादेव सुनार का तालाब की ओर जाने का समय हो गया है।
2: अरे भगवान, अंधेरे में इसका जर्जर शरीर और पोपले मुंह को क्यों दिखाना चाहती है? ऐसा लगता है पिशाच राज के दर्शन हो गए। सारा दिन खटपट और सुबह को ये सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता।
1: इतना बेईमान है ना, हर गहने में अपना टांका रखता है।
3: पता नहीं अब किस मोहमाया में अटका है।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दादा।
5: माँ माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
1: मार कर टांगे तोड़ दूंगी, चल हट। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
5: माँ बहुत भूख लगी है, दूध ही दे दो।
1: ठहर जा, मेरे दो हाथ हैं, हाथ पाँव मत फुला मेरे, चुपचाप खड़ा रहे यहीं पर।
2: अरे सुनती हो, मेरा गमछा कहाँ है?
1: तुम्हें कोई चीज मिली है आज तक? जो मिलेगी वही सूख रहा है रस्सी पर।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, ओ बहू, अरे चाय बन गई क्या?
6: बाऊजी अभी देर लगेगी।
1: अब बच्चों को कुछ खाने को दूं या इनकी चाय बनाऊं? इन्हें भी सुबह से खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं सोचता।
4: चलो ठीक है, जब तुम्हें फुर्सत हो तो दुकान पर ही कुछ खाने को भेज देना।
7: महादेव जी, परसों अपनी औरत के कान का बुंदा ठीक होने के लिए दिया था, हो गया क्या?
4: हाँ हाँ हो गया भाई, यही तो रखा था। ये लो।
7: वजन तो बराबर है ना?
4: अरे बिल्कुल बराबर है। लो सामने है, देख लो, तुम्हारी ही आंखों में फेर है।
7: मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो तुम्हारे पास आया। लो अपने पैसे।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, अरे बहू, चाय नहीं बनी अभी तक? कैसी बहुएं हैं, सुबह के समय ससुर को एक प्याला चाय भी नसीब नहीं है। अरे गलती इनकी नहीं है, अरे मेरे बेटे ही इनके गुलाम हैं, उन्होंने ही इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। ये हालत तो जब है जब मैं ही कमा कर देता हूं। निकम्मी औलाद, कुछ कमाते थमाते हैं नहीं, और रात को दो छटाक पीकर चैन भी नसीब नहीं होने देते। सारा दिन मेरे सिर पर नाचती है, उन्हें अलग संभालो।
2: हाँ जी बाबू, महादेव जी, मेरी अंगूठी तैयार हो गई।
4: भाई तुम्हारी पुरानी अंगूठी को गला कर तुम्हारे हिसाब से तैयार करने में

0: बहुत मेहनत लगी। ये लो देखो।
1: ये क्या किया? इससे तो मेरी पुरानी अंगूठी अच्छी थी।
0: तो अच्छी बात है, इसे गला कर तुम्हारी पहले जैसी बना दूंगा, कल ले जाना।
1: हाँ हाँ समझे, लो पकड़ो अपने।

0: अरे अरे मेरे प्यारे तोते, एक तू ही मेरा है, सतगुरु दत्त शिव दत्ता।
1: हर हर महादेव। क्या हाल है बच्चा?
0: घोर कलयुग है, घोर कलयुग है महाराज। आओ बैठो।
1: अच्छा।
0: अरे चुन्नू, ओ चुन्नू, अरे कोई है क्या? देखो साधु बाबा बैठे हैं ड्योढ़ी पर। अरे कुछ खाने को भेज दो, सुबह से शाम हो गई। एक प्याला चाय बस तालाब पर पंडित जी के साथ पी थी, पूरा दिन गुजर गया।
2: ये लो पकड़ो, घर में एक काम है, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, लत्ते धो, औलाद संभालो, सब धंधे पे लो और इनकी चेचे भी सुनो।
0: ए दाता, ये तूने क्या घृणित जीवन दिया है। वक्त पर अन्न तो जानवर का भी हक है, इतना करता हूं इनके लिए, ये सब क्या मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? लानत है ऐसे भोजन पर, मेरी गैरत मुझे धिक्कार रही है, नहीं करना मुझे भोजन। लो बेटा मिट्ठू, मेरे प्यारे तोते, तुम तो हरी हरी मिर्च खाओ, पानी, हाँ लो पानी भी डाल देता हूँ, लो पी लो।
3: महादेव जी, इतनी रात गए यहाँ घर के बाहर बैठे हैं, ठंड बहुत है, अंदर चले जाओ।
0: अरे घर की कलेशों से तो मैं और मेरा मिट्ठू बाहर ही भले। सतगुरु दत्त शिव दत्ता दा, सतगुरु दत्त शिव दत्ता। राम राम राम राम राम, जय सिया राम जय सिया राम, सतगुरु दत्त शिव दत्ता। चलो भाई मिट्ठू को उठाता हूँ। अरे भाई मिट्ठू, भोर हो गई। मिट्ठू मिट्ठू, अरे पिंजरा खुला है, मिट्ठू कहाँ उड़ गया? मिट्ठू मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा, कहाँ चला गया मिट्ठू? क्या करूं, किससे पूछूं, यहां तो कोई दिखता भी नहीं। हे भगवान, ये किसकी बदमाशी है, मेरा मिट्ठू। अरे अरे बहू बहू, अरे मोहन, चुन्नू। सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना जाने कहां छुप गया, ना जाने कहां छुप गया। सतगुरु सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, शिव दत्त दाता। अरे वो रहा, हाँ वो रहा। अरे अब तो आजा मेरे मिट्ठू, आजा आजा आजा आजा बेटा आजा। अरे कहाँ जाके बैठा है? अरे पेड़ पर मत बैठ, आजा आजा आजा आजा आजा पिंजरे में आजा, आजा आजा आजा। अब पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा इसे। अरे अरे ये तो फिर उड़ गया। सतगुरु दत्त शिव दत्ता।
4: अरे देखो तो महादेव को, इस बुढ़ापे में तोते से कितना मोह लगाए बैठा है। अरे तोता है, उड़ गया तो उड़ गया।
5: अरे बुढ़ऊ, ये तोता नहीं उसकी आत्मा है, अरे जन्म मरण का साथी है, देखते नहीं उसकी क्या हालत है।
6: जन्म मरण का साथी, देखते नहीं उसकी क्या हालत है। घर में इतने नाती पोते, बेटे, बहुएं होते हुए भी ना समय पर खाना है ना चैन की।
7: खेतों से फुर्सत मिल गई जो महादेव का किस्सा लेकर बैठे हो, भागो यहाँ से, क्या चिल्लपो मचा रखी है।
0: सुबह से दोपहर हो गई लेकिन ये मिट्ठू पकड़ में नहीं आया। अरे मेरे बेटे, अरे मेरे मिट्ठू, अब तो आ जा। ओ शिव दत्त, आ जा। क्यों भैया, ये आम के पेड़

0: की फुनगी पर बैठे क्या बतिया रहे हो? आजा आजा मेरे भाई, पिंजरा खाली है। अरे अरे उड़ क्यों रहा है? अरे मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, मुझे नहीं पहचानते क्या? अच्छा लो, मैं एक काम करता हूं, मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं। मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं, तुम चुपके से पिंजड़े में आ जाना। लो, मैं पेड़ की ओट में आ गया। ओ शिव दत्ता, सुबह से ये समय आ गया, अरे ना खाने का ना पीने का, तलवों से आग निकल रही है और सिर में चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। सतगुरु दत्त शिव दत्ता। मैंने पकड़ लिया। ये तो फिर उड़ गया।
1: शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता तो कभी पिंजरे के द्वार पर आ बैठता, अपनी दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। तोता ही वो प्राणी था जो महादेव को चेतन रखता था। उसका हाथ से निकलना मानो जीवन ही लुप्त हो गया हो। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा बीच बीच में झपकियां ले लेता था और क्षण भर में चौंक कर आंखें खोल देता और इस गहन अंधकार में महादेव की ध्वनि सुनाई देती, सतगुरुदत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजरी कि अचानक एक आहट हुई। देखा दूर वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा है। देखा कई आदमी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की महक ने उसे उत्तेजित कर दिया और वो ऊंची ध्वनि में बोला, सदगुरु दाता शिव दत्त दाता। उसकी आवाज ने इस गहन सन्नाटे में बंदूक की गोली जैसी आहट का काम किया। सारे चिलमबाज भाग खड़े हुए।
0: ये कौन है? इतनी रात गए, अब ठहरो। अरे लगता है ये सब चोर हैं। अरे चोर, अरे पकड़ो। ये दीपक जल रहा है यहीं पर तो ये। अरे ये कलसा कैसा रखा है? अरे ये तो शर्फियां। क्या करूं? एक काम करता हूं, पहले ये दीपक बुझा दूं, कलसा उठाता हूं। बहुत भारी है। अब इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूं। कहीं चोर वापस आ गए और मुझसे मोहरे छीन ली तो? नहीं, क्या करूं मैं? हाँ, ऐसा करता हूं, गड्ढा खोद कर इन मोहरों को यहां दबा देता हूं। हाँ, और कुछ अपने साथ कमर में बांध लेता हूं। इन मोहरों से से अब पक्का मकान बनवाऊंगा।

सर्राफे की एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा। सब रिश्तेदार मेरे तलवे चाटेंगे। नहीं नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। हाँ, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, ब्रह्म भोज करवाऊंगा, शिवालय और कुआं भी बनवाऊंगा। हाँ, अरे परलोक तो सुधार लूं कम से कम। रोज कथा सुनूंगा और किसी भी साधु संत को अपने दर से भूखा नहीं जाने दूंगा। लेकिन लेकिन कहीं चोर आ गए तो मैं भागूंगा कैसे।

0: कैसी कल्पना कर रहा था मैं। अरे ओहापो में सुबह हो गई। अरे मिट्ठू कहाँ है? सतगुरु शिव दत्ताता, सतगुरु शिव दत्ताता, राम के चरण में चित्त लागा, राम के चरण में चित्त लागा। अरे अरे मिट्ठू, अरे मेरे तोते, आओ आओ आओ आत्मा राम। तुमने कष्ट तो बहुत दिया, राम के चरण में चित्त लगा। मिट्ठू मिट्ठू, हमारे दिन बदल गए बेटा, अब तेरा पिंजरा सोने का बनवाऊंगा। सोने का बनवाऊंगा तेरा पिंजरा। चलो घर चलते हैं। इस कलसे को नांद में छिपाकर कोयले से ढक देता हूं और कोठरी में रख देता हूं। हाँ, सुबह सबसे पहले अब मैं पुरोहित से मिलूंगा। हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: अरे पुरोहित जी, पुरोहित जी,
2: कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। अरे जजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता।
1: अरे पाए लागन पंडित जी।
2: अरे ये मंगल मूर्ति कहाँ से यहाँ पहुंची? क्या है जी, क्या बात है, क्या कहते हो? अरे जानते नहीं इस समय हम पूजा कर रहे हैं?
1: महाराज, आज मेरे घर पर सत्यनारायण की कथा है।
2: महादेव, महादेव के द्वार कथा है? ये तो बढ़िया साधारण घटना है। अरे ये तो उतनी ही विश्वसनीय है जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकलना। आज क्या है
1: जी? कुछ नहीं पुरोहित जी, बस यूं ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, महादेव सुनार के घर आज सत्यनारायण भगवान की कथा है। सभी आमंत्रित हैं, कथा के बाद भोजन की भी व्यवस्था है। सुनो सुनो सुनो गांव वालों, सुनो,
4: अरे सुनार के घर, महादेव के घर सत्यनारायण की कथा और ऊपर से भोज।
5: अरे पूरे गांव को बुलाया है
6: भाई, आज रेत में दूब कैसे उगी?
5: ये तो वही बात हो गई कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल रहा है।
1: भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी है, कितने खरे का खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहता है। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा पूंजी मैंने मार ली हो, जिसके खरे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए।

0: कल से एक महीने तक जब भी जी चाहे आप आए और अपना हिस्सा चुकता कर लें, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
1: हम कहते नहीं थे?
2: भैया क्या खाकर मरेगा, कहां से चुकता करेगा, हजारों का जोड़ बन जाएगा।
3: अरे महादेव जी, जो जीते हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो परलोक सिधार गए उनकी वसूली कौन करेगा?
0: अरे उनके घर वाले तो होंगे ना।
4: अरे भाई, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, बीत गई सो बात गई, अब किसे याद है क्या क्या वसूलना।
2: अरे भैया, सत्यनारायण की पूजा अर्चना और भोग चल रहा है, यही क्या कम है। महादेव तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनवाने के लिए तुम्हें सोना दिया था?
0: हाँ।
2: और तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे, याद है या नहीं?
0: हाँ हाँ पुरोहित जी, अच्छी तरह से याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा?
2: यही कोई 50 रुपए।
0: तो ये लीजिए 2 मोहरे।
4: ये तो सरासर बेईमानी हुई, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा।
2: बेचारे से पैसे ऐंठ लिए,
4: पूरे ठग ठग। हाँ जी, नाम के ही पंडित जी हैं, नारायण का भी डर नहीं, नियत ऐसी खराब, राम राम राम राम राम, राम, राम, राम।
0: मालूम होता है आप सभी लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके बाद तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें।
1: देव जी ने यार
0: उद्धार करें।
1: सोचने वाली
5: बात है।
6: एक माह बीत गया, लेनदारी के नाम पर महादेव से मिलने कोई नहीं आया। महादेव को चोरों के भय से रात को नींद नहीं आती थी, अब वो कोई काम नहीं करता था, रहा सहा नशे का चस्का भी जाता रहा। उसके द्वार पर जो भी साधु भोगी आते उनके सत्कार में महादेव का दिन गुजरने लगा। दूर दूर तक आसपास के गांवों में महादेव की कीर्ति फैलने लगी। 1 माह बीत गया, एक भी आदमी इस एक काम में हिसाब करने या लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। आप वेदी ग्राम जाइए तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है, वो ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। तालाब की मछलियां कोई नहीं पकड़ता। समीप ही किनारे पर एक विशाल समाधि है, समाधि पर आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता वो रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे से आवाज आती है।
0: सतगुरु दत्त शिव दत्ताता, सतगुरु दत्त शिव दत्ताता, सतगुरु दत्त।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं यानी अंतिम कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, अशोक शर्मा, गौहर परवेज।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश के 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835,67,00,000 रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। 3 मई को ही नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है। अब पुनः परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, ना ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, एक बज चुके हैं। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
1: सखियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। इस समय मैं धम मित्रा आपके साथ हूँ। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, शुरू हो चुकी हैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ। बच्चों की ही क्यों, हमारी भी। रोज़ रोज़ का एक सा रूटीन, सुबह सुबह टिफ़िन बनाना, बॉटल, स्कूल ड्रेस की तैयारी से कुछ दिन की राहत। मुझे लगता है यही बेस्ट टाइम है वो काम करने का जिन्हें आप काफ़ी समय से प्लान कर रही थी और हो नहीं पा रहे थे। ये जो कुछ समय मिला है बच्चों के साथ साथ आपको भी, उसे आप बेहतर यूज़ करें और बनाएं यादगार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सखियों, टूर प्लान करें, कैंपिंग करें पूरी प्लानिंग के साथ। दूरबीन साथ लेकर जाएं, प्रकृति के बीच पेड़ पौधे, तरह तरह के पक्षियों को देखें, उनकी आवाज़ को सुने, पहचानें, महसूस करें। पेड़ पौधों को पहचान कर बच्चों को बताएं। सखियों,

प्रकृति के साथ बिताए पल हमें प्रकृति से जोड़े रखते हैं। इस दौरान बस ये याद रखें कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, ना पेड़ पौधों को तोड़ें, ना ही उन पर कुछ लिखें। सखियों कहीं दूर नहीं जाना है तो एक शॉर्ट रोड ट्रिप ही प्लान करें। सब साथ में हो, स्नैक्स हो, म्यूजिक हो और बाहर सुंदर नज़ारे। सखियों, ये आपस में जुड़ाव का एक बेहतर तरीका है। पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं, दोस्तों को भी शामिल करें उसमें। सच मानिए, जितने लोग उतना मज़ा। सखियों, बच्चों को प्लानिंग के साथ साथ तैयारी में भी शामिल करें। ऐसा करने से उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी जागता है। सखियों, जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं, खुशी तो उसी में मिलती है, इसलिए कुछ क्रिएटिव करें, वो भी अपने मन का। सखियों, कुछ भी कह लो, पर बच्चों को छुट्टी का असली मज़ा तो दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ बिताए पलों में ही मिलता है। उनका प्यार दुलार, दादी नानी के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन, उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, किस्से कहानियाँ हमारे जीवन में अपार खुशियाँ भर देते हैं। सच कहूँ तो ये पल दुर्लभ और अनमोल होते हैं। क्यों ना इन छुट्टियों में इन पलों को संजो लें और यादगार बना लें।

0: सखियों, महिला सुरक्षा आज के समय में बहुत संवेदनशील विषय है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में सभी महिलाएं सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं। इसी संदर्भ में हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियां और सावधानियां। इस भेंटवार्ता में ASP ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम के इस भाग में, जहां आज हमारा विषय है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा समाज की प्रगति का मूल आधार है, क्योंकि सुरक्षित नारी ही परिवार, समुदाय और राष्ट्र को भी मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं IPS विदिता जी, जो ग्वालियर जिले में ASP के पद पर कार्यरत हैं। उनके बेटी के पेटी जैसे अनूठे प्रयोगों से प्रेरित होकर ये साक्षात्कार ग्वालियर जिले में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों, रणनीतियों और जागरूकता पर केंद्रित है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला सवाल, हमारा जो शहर है ग्वालियर, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं और इसको लेकर आपके विभाग की क्या रणनीतियाँ हैं?
0: देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, बट यदि हम आज की इस युग की बात करें जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, जहाँ पर सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन साथ ही विडंबना ये भी है कि शायद जो काम की चीज़ें हैं वो जनता तक, महिलाओं तक खासकर नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे युग में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अवेयरनेस की है, अवेयरनेस इन रिलेशन टू व्हाट लॉज आर देयर रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, कैसे महिलाएं किसी भी स्थिति में किस व्यक्ति को कांटेक्ट करें, किस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें, और यदि वो नहीं कर पा रही हैं तो अपने लेवल पर वो किसी भी सिचुएशन से कैसे डील कर सकती हैं। आई फील कि दैट इज़ द बिगेस्ट लैक्यूना जो आज के समय में किसी भी शहर में है। यदि हम मेट्रो सिटीज़ की भी बात करें, यदि हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की भी बात करें, तो ये चैलेंज आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है। और यदि हम पुलिस विभाग के प्रयोगों की बात करें, हमारे कार्यक्रमों की बात करें, तो आई वुड लाइक टू टेल कि एक जो हमारी स्पेशल ब्रांच रहती है कम्युनिटी पुलिसिंग की, उसमें फोकस जो हमारा रहता है, पुलिस विभाग का रहता है, वो इन्हीं चीज़ों पर रहता है कि हम कम्युनिटी के अलग अलग वर्गों के बीच में जाएं। साथ ही जो महिला सुरक्षा विंग है उसका फोकस स्पेसिफिकली विमेन और जितनी भी हमारी बालिकाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जाने वाली बच्चियाँ हैं, उन पर रहता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग और जो हमारा क्राइम अगेंस्ट वेमेन विंग है, वो दोनों बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, समय समय पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मुस्कान अभियान चलाया जाता है, साथ ही मैं हूँ अभिमन्यु अभियान चलाया जाता है, साइबर स्पेस की सुरक्षा को लेकर, कैसे खुद को साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रखें उसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं। तो समय समय पर PHQ लेवल से भी अभियान चलाए जाते हैं, जिला स्तर पर हम लोग भी हमारे जिले की क्या समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग अभियान चलाते हैं। जैसा अभी आपने बताया, बेटी की पेटी भी हमारा एक ऐसा ही अभियान था, जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर महिलाओं बच्चियों का ज़्यादा आना जाना रहता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या फिर जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स का क्लस्टर है, वहाँ पर हम एक बेटी की पेटी लगाते हैं, जिसमें जो भी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ खासकर, वो अपनी शिकायतें लिखकर डाल सकती हैं। क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक हिचक रहती है पुलिस तक जाने में, कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा डर भी रहता है कि हमारी बात को कितना सीरियसली लिया जाएगा, क्या हमारी बात सुनी जाएगी, क्या हमें जज तो नहीं किया जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों से डील करने के लिए हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसमें आप अपनी एनोनिमस शिकायतें भी डाल सकते हैं, और नियमित समय पर इन पेटियों को पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा ही खोला जाता है और उन पर फिर कार्यवाही की जाती है।
1: बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आपके विभाग का। ये अवेयरनेस की बात आप अभी कर रहे थे, सोशल मीडिया एक टूल है आज के समय में, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए?
0: सबसे पहले तो वेन एवर वी गो टू स्कूल्स और कॉलेजेस, तो हम सभी को यही बताते हैं कि सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ इट एंड हाउ मच वी यूज़ इट। बहुत बारी जैसे यदि हम पढ़ाई की ही बात करें, तो इतनी सारी कोचिंग्स ऑनलाइन हैं, इतने सारे ट्यूटर्स ऑनलाइन हैं कि जो टायर 3 सिटीज़ हैं, जो बहुत छोटी छोटी शहर हैं, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ने के लिए जब यूट्यूब का, इंटरनेट का यूज़ करने लगते हैं, तो दे सरपास देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम पॉजिटिवली सोशल मीडिया को यूज़ करने लगें, थोड़ा सा हम केयरफुली अपना माइंड अप्लाई करते हुए यूज़ करें, तो इट कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर आर ओन डेवलपमेंट। साथ ही सोशल मीडिया का यूज़ पुलिस कैसे करती है, यदि इस बारे में हम बात करें, तो आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हों, कॉलेज वाले बच्चे हों, या फिर हाउसवाइफ्स हों, सबके पास मोबाइल है और सबकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, सब यूट्यूब पर हैं, सब फेसबुक पर हैं, सब इंस्टाग्राम्स पर हैं। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा जो हमारे पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स रहते हैं, समय समय पर हम उसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते हैं, वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और रील्स के माध्यम से भी ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, छोटी सी वीडियोस बनाकर भी ये जो इंफॉर्मेशन है ये शेयर की जाती है। जैसे अभी नए कानून आए हैं, IPC CRPC को रिप्लेस किया गया है BNS और BNSS के द्वारा, तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या विक्टिम सेंट्रिक प्रोविजंस आए हैं, महिलाओं के लिए ऐसी और क्या नई चीज़ें आई हैं, तो उन सब के बारे में भी छोटे छोटे फोटोज, वीडियोज, पोस्टर्स बना के इन पर डाले जाते हैं।

0: हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो यदि हम अपने इन छोटे से प्रयासों के माध्यम से थोड़े से जनता को भी यदि हम अवेयर कर पाएं, तो आई थिंक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, माइंडफुल यूज सोशल मीडिया का एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। विदिता जी, अगला प्रश्न मैं करना चाहूंगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विषय में। जो सुरक्षा का संकट है वो वहां पर भी होता है इक्वली, इसको लेकर पंचायत स्तर पर कोई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं क्या?
0: ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं शासन की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से, वो शहरी क्षेत्र तक ही लिमिट हो जाते हैं। इस बारे में जो हमारा सोचना है वो ये है कि समस्याएं तो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी आती हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो शहरी क्षेत्रों से बहुत कम है। तो ऐसे में हमारे द्वारा लगातार जन संवाद किया जाता है, जहां पर हमारे थाना प्रभारी, हमारी महिला पुलिस अधिकारी समय समय पर किसी ना किसी गाँव में जाती हैं, वहां पर जन संवाद का आयोजन करती हैं, जिसमें हम पंचायत के सदस्यों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सभी आए, और उनसे ये जो निरंतर समय पर, निरंतर अंतराल पर जो ये संवाद रहते हैं, उसमें हम उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो अभी किसी ऐसी समस्या को फेस कर रही हैं, क्या ऐसे कोई गुंडे बदमाश हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं आसपास, क्या कोई अवैध शराब का कारोबार चल रहा है जिससे वो या उनके परिवार वाले पीड़ित हैं। साथ ही जो पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं उनके बारे में भी उन्हें जानकारी देते हैं, जो नए नए प्रावधान आते हैं ऐसे जन संवाद में हम उनकी जानकारी भी उन्हें देते हैं। तो ये बिल्कुल पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, ग्रामीण अंचल में जाके, जो भी हमारे गांव रहते हैं उनकी पंचायत में जाके हमारे द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं, और इसके जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बिल्कुल आखिरी उस व्यक्ति तक, आखिरी उस महिला तक पहुँच सकें जिसको पुलिस स्टेशन के नाम सुनकर ही जिसे डर लगता है, जो शायद कभी आए भी नहीं होंगे, जिन्हें शायद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, और शायद वो कभी अपने जीवन काल में आएंगे भी नहीं पुलिस थाने, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो दूर दराज क्षेत्र में निवासरत है।
1: विदिता जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको पता है एक हेल्पलाइन नंबर है, सब उसको जानते हैं, लेकिन जब कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसा महसूस होता है कि कोई इस तरह का संकट है, तो आप ये भूल ही जाते हैं कि कहीं आपने सेव किया है वो हेल्पलाइन नंबर और प्रेस करना है उसको। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में हमें हमारी युवतियों को या जो भी महिलाएं हैं समाज में, प्रशिक्षण और सेल्फ डिफेंस का कोई प्रोग्राम जो उनको सिखाया जाए तो वो चीज़ें शायद ज़्यादा काम आएंगी। ऐसा कोई सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम या प्रशिक्षण की योजना है आपके विभाग में?
0: पुलिस विभाग का PHQ स्तर से एक सृजन कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम NGOs के साथ टाई अप करते हैं, और फिर ये NGOs अलग अलग क्षेत्र में जाकर ऐसी कम्युनिटीज़ को चुनते हैं जहां पर स्कूल नहीं भेजा जाता है बच्चों को, जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर शासन के कार्यक्रमों के प्रति या फिर पुलिस के कार्यक्रमों के प्रति कोई भी अवेयरनेस नहीं है। अभी हाल ही में हमारे द्वारा माधोगंज क्षेत्र में एक NGO के साथ मिलकर एक ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम ऐसे बच्चों को जिनको स्कूल में होना चाहिए, उन बच्चों की हम 15-20 दिन की क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम उनको आउटडोर क्लासेस भी लेते हैं, इंडोर क्लासेस भी लेते हैं। आउटडोर क्लासेस में उनको थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, इंडोर क्लासेस में उनको थोड़ा बहुत जो भी हमारे नए लॉज हैं उनकी जानकारी दी जाती है, और अलग अलग विषयों पर भी उनकी क्लासेस ली जाती हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रम सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सभी जिलों में हो रहे हैं और निरंतर अंतराल पर हो रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ को चुनकर इसमें भागीदार बनाया जाता है।
1: अच्छा, लॉस तो विदिता जी पहले से बहुत ज्यादा है ही, हमारे पास एनफ है। इम्प्लीकेशन को लेके आपको भी लगता है सशक्त होना चाहिए हमारे सिस्टम को?
0: लॉस हमारे पास है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, बट आई फील कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत बारी हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ जो घटना हुई है क्या वो अपराध है, क्या वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। जैसे स्टॉकिंग की यदि बात करें, तो यदि हम आज के बच्चों से पूछेंगे कि कितनी लड़कियों को अवांछित मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, हम अपना इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, हमें भी हजारों में मैसेजेस मिलेंगे, वो भी डिजिटल स्टॉकिंग है। यदि कोई बार बार हमें मैसेज कर रहा है, हमारे मना करने के बाद भी मैसेज कर रहा है, वो भी स्टॉकिंग है, और वो भी लो के परव्यू के अंडर आता है। तो आई फील कि अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि उसके साथ जो घटना हुई है वो अपराध की कैटेगरी में है कि नहीं है, तब तक वो पुलिस के पास नहीं आएगा। और जब तक पुलिस को उस चीज़ की जानकारी

0: नहीं लगेगी, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी। तो आई फील कि अवेयरनेस ही वो टूल है जिसके जरिए हम अपनी जनता को सबसे ज्यादा सशक्त बना सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, दोनों ही पक्ष आपको संदेश देना चाहती है इनको महिलाओं की सुरक्षा के विषय में?
0: जो भी श्रोता आज मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को यही बताना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि सपने देखने चाहिए हमें, और बहुत बड़े सपने देखने चाहिए। और केवल सपने देखने नहीं हैं, जितने बड़े सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी है। और ये विश्वास हम आपको दिला रहे हैं, ग्वालियर पुलिस आपको दिला रही है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए वो ग्वालियर पुलिस आपको देगी। पूरा प्रयासरत है ग्वालियर पुलिस कि आपको एक सुरक्षित वातावरण मिले जिसमें आप मेहनत कर सकें और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें।
1: जी, जाहिर सी बात है आपके संदेश को सुनकर जो हमारे श्रोतागण हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, उनको आलंबन मिल रहा होगा। लेकिन सैड ट्रुथ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम में उनका विश्वास नहीं है और वो नियमों और कानूनों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि ये अवसर उनको भी एक संदेश देने का है, अगर आप देना चाहें।
0: देखिए, मदद करना हमारा कर्तव्य है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति को, उस फरियादी को, उस आवेदिका को, आवेदक को हम संतुष्ट कर कर भेजें। उसके अलावा भी सुओ मोटो कई बारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आती हैं कि असामाजिक तत्व असामाजिकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं या ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में उनका भय बना हुआ है। आप लोग भी निश्चिंत रहिए, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पुलिस आप तक ज़रूर पहुंचेगी और आपके जो भी कर्म हैं उनकी जो भी लीगल सज़ा है वो आपको ज़रूर मिलेगी।
1: बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, और अब इसी के साथ हम साक्षात्कार को विराम देंगे। आपने इतने संवेदनशील विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सखियों, अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियाँ और सावधानियाँ। एएसपी ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। सखियों, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे, आर के नारायण। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई है। नारायण जी ने अपने जीवन काल में 2000 से ज़्यादा उपन्यास, कहानियाँ व नाटक लिखे। उनकी लेखन शैली ने भारतीय जीवन के सार को बड़ी ही सरलता और गहराई से छुआ था। उनका पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक ने स्वामीनाथन नामक चरित्र का परिचय कराया, जो मालगुड़ी नामक काल्पनिक कस्बे का एक शरारती और सहज लड़का था। इस उपन्यास के सफलता के बाद उन्होंने कई अन्य रचनाएं लिखीं, जिनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द गाइड और द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी शामिल है, जिस पर धारावाहिक भी बना था और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया था। उनकी लेखन शैली जो सरलता और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ से परिपूर्ण थी, भारत और विदेश दोनों जगह पाठकों ने उन्हें खूब सराहा। मालगुड़ी डेज लघु कथाओं का एक संग्रह जो मालगुड़ी में जीवन की सादगी और सुंदरता को दर्शाता है। इसमें प्रेम, विरह और मानवीय संबंधों को भी शामिल किया गया। आर के नारायण जी की प्रत्येक कहानी भारतीय संस्कृति और मानव स्वभाव के अनूठे पहलू को दर्शाती है। नारायण की असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों को चित्रित करने की क्षमता ने उनके लेखन को अत्यंत प्रासंगिक बनाया। नारायण जी का भारतीय साहित्य पर प्रभाव अतुलनीय है। उन्हें अंग्रेजी में आधुनिक भारतीय लेखन के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनकी अंतिम रचना दादी की कहानी 1992 में 80 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई, जो कहानी कहने के प्रति उनके अटूट जुनून को दर्शाती है। अपने अंतिम वर्षों में भी नारायण जी भारतीय साहित्य में एक प्रिय व्यक्तित्व बने रहे। सखियों, आर के नारायण को साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1964 में पद्म भूषण, सन 2000 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले। नारायण को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा 1980 में A.C. बेसन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर के नारायण जी का निधन 13 मई 2001 को चेन्नई में हुआ। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें हमेशा

सखियों, गर्मियां आते ही हम आम, तरबूज, खरबूज को खूब मज़े से खाते हैं, जो हमारे शरीर में पानी की कमी को तो दूर करते ही हैं, साथ ही ताजगी भी महसूस कराते हैं। पर सखियों, गर्मियों में एक और फल लाभकारी है, वो है बेल। सखियों, इसके गूदे से एक ताजगी भरा स्वादिष्ट पेय तैयार किया जाता है। सखियों, इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम व विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम से भरपूर होने के कारण बेल का शरबत धमनियों के कार्य को बेहतर बनाता है और हृदय संबंधी कार्यों में सुधार करता है। सखियों, बेल का रस पेट संबंधी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन पाचक टॉनिक है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाते हैं। इसका रस भूख को बढ़ाता है, थकान दूर करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। सखियों, हीट स्ट्रोक में भी ये बहुत फायदा करता है, इसलिए सखियों, हो सके तो बेल का प्रयोग इन गर्मियों में ज़रूर करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, ताजगी भरा महसूस करें। इसी के साथ अपनी सखी धम्ममित्रा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रमोद कुमार जोशी के गाए लोकगीत। पहले चौकड़िया, फिर गारी, इसके साथ दादरा। तो सुनते हैं प्रमोद कुमार जोशी को।

प्रमोद कुमार जोशी के गाए इस दात्रा गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है और जिसमें आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए भजन।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: कवि हेमंत देवलेकर,
5: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
6: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हीरा पन्ना फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का गीत और आरडी वर्मन का संगीत।

और कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रेम पुजारी फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, नीरज का गीत और संगीत एसडी वर्मन का।

0: लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर देश के उस अडिग संकल्प को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों बिना नई खरीद किए जहां संभव हो सके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की उनकी 7 अपीलों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के केजीपी 12

के चारों शावकों कल सुबह एक मांद के पास मृत और शतविषत हालत में मिले। महज एक महीने पहले 11 अप्रैल को जन्मे इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जिंदा देखा गया था। शुरुआती जांच में आशंका है कि किसी दूसरे जंगली जानवर ने इन्हें मारा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। वन विभाग ने बताया कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। कूनों के बाकी सभी चीतों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी कई लोगों से पूछताछ की। आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स वायदा बाजार में सोना करीब 6% उछलकर करीब 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 6.4% की बढ़त के साथ करीब 2,96,000 रुपये प्रति किलो का कारोबार कर रही है। दरअसल सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसकी वजह से बाजार में ये भारी उछाल आया है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि निमाड़ समेत कई जिलों में शाम का मौसम पलटा और तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम का यह मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजीलॉकर उमंग ऐप पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। तो ये था हमारे समाचार इस बुलेटिन के, और अगला बुलेटिन सुनिए शाम को 7:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष

0: उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स

0: सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना

0: भावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। पहली फरमाइश है पप्पी लहरी और आशा भोंसले की आवाज में गाया हुआ प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत की। गीत इंदिवर का और संगीत पप्पी लहरी का। इस गीत की फरमाइश भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मीका बिरक। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आप सब ने पसंद किया है प्रेम गीत फिल्म का ये नगमा, आवाज़ जगजीत सिंह की, गीत इंदिवर का और संगीत जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजिए बनियापारा धमतरी से, छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी शरद डुडवानी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दंतरिंगी से भागवत वर्मा, औरंगाबाद से राजेश

सावली पाटिल, शीतल राजेश और राजदीप राशेश, साथी राशि राजेश। आप सबने पसंद किया है काश फिल्म का ये गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की। फारूक कैसर के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसार, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने ये साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में ये बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंटर फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और 7:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता, विषय है मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। साथ ही सुनिएगा बुंदेली समाचार और लोक रंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:00। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। 10:00 सुनिएगा वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग रागेश्री। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी

0: छल रखता है, कोई किस में महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना, कि मतलब गाने सुनाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था मन।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज़ तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज़ आ रही है ना, वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है
0: अच्छा,
1: कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियाँ हाथ में पहनी हुई
0: तो
1: है।
0: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ,
1: ये
0: है
1: बातचीत बाद में
0: ना।
1: करेंगे, पहले हम विषय बता
0: विषय
1: दें।
0: बता देते, देखो व्यंजन की बात आज करने वाले हैं, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला
1: ये
0: दूंगी।
1: जो ऐसे आइटम होते हैं ना, भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना
0: हाँ
1: के
0: ये बात तो
1: लेकर नहीं
0: सही
1: आ
0: है,
1: सकते
0: सही
1: ना
0: बात
1: इसको,
0: है,
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में, हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
0: और
1: है।
0: इस शर्त पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे भेजेंगे, और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं
1: और
0: ना।
1: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
0: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते
1: ये
0: हैं?
1: सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी, आप खाने के लिए जीते हैं, सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
0: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो
1: भाई मंजरी जी, मैं तो
0: जाता
1: खाने के लिए जीती हूँ, है ना,
0: है
1: क्यों मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है,
0: ना।
1: इतने
0: तब
1: सुंदर
0: भी आप
1: सुंदर
0: मेंटेन है ना ये
1: तो
0: बात हो
1: वही तो
0: जाती है,
1: बात
0: तो
1: है
0: इसमें
1: कि
0: हमें संतुलन रखना है ना।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है ना,
0: बिल्कुल
1: ये
0: आनंद है, और
1: संतुलन जरूरी है।
0: संतुलन बहुत जरूरी है, और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियाँ बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियाँ, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
2: कितनी
1: वो
2: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे

0: पसंदीदा वस्तुओं में से एक होते हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है
0: और
1: ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है। और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध हैं। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौक़ों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिज़ाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं। और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काता जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, और 1-2 महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
0: हाँ
1: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
0: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि
1: जी
0: हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण।
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीज़ों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीज़ें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश

0: में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब लोग घर में चक्की भी चलना है तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से
0: धूप,
1: पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है, उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो
0: आहार में,
1: इतनी, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं, अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते हैं।
0: गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं,
1: जी
0: है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी, ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक
0: जी
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम थिरक रही थी इस गाने
1: मंजरी
0: में है
1: जब अच्छा
0: ना।
1: अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी
0: हाँ भाई
1: पायल
0: मैं
1: बजने
0: देख रही
1: लगती
0: थी तो देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
1: बहुत सारे हमारे
0: हमारे, अच्छा
1: साथियों
0: एक
1: ने।
0: साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होत रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भर कर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
1: और
0: है
1: अब
0: ना
1: लेते हैं एक
0: अंतराल।
1: ब्रेक।

0: सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से।
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है।
1: है, बहुत सुंदर
0: और
1: बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक

0: लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पर चढ़ के खिड़की थी, तो वहाँ खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफ़ी हैवी थी, वो चढ़ी वहाँ बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
1: नहीं,
0: ऐसा लग
1: देखिए
0: रहा था।
1: खाने के लिए जीना ज़रूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
0: क्या बात
1: ऐसा
0: है।
1: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए, यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
0: बिल्कुल।
1: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे,
0: हाँ,
1: बेर
0: सारे
1: खाते
0: फल।
1: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते
0: अरे,
1: हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे,
1: खाया
0: मतलब
1: जाता है।
0: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया
0: हाँ, हम नहीं बता रहे
1: तो।
0: उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
1: जी।
0: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज़्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज़्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी हैं। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वैसे
1: पढ़ने
0: मैंने
1: में
0: आपका
1: दिक्कत
0: पढ़
1: नहीं
0: लिया।
1: आती है ना।
0: हाँ, वो इजली सी आंखों में अटैक कर जाता है,
1: जी।
0: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
1: एक
0: दिक्कत
1: हमारे
0: नहीं।
1: साथी लिखते हैं, मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत।
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते, कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों, कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये
0: तो अब
1: टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
0: लेकिन
1: ना।
0: इसमें मजा आता है, जिसको लगे अरे मैंने दोबारा पढ़
1: पर अगर
0: लिया।
1: हमने गलती को, है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि
0: हाँ
1: हाँ हमने गलती कर ली,
0: हाँ तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: भी दिक्कत है,
1: आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: ना। आज ये
0: बिल्कुल।
1: शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर

0: आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
1: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे। अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
0: एक
1: आपने।
0: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
1: क्या
0: एक दिन।
1: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत सुंदर
1: और
0: विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: तो
0: बता
1: हमारे
0: दीजिए।
1: साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है, जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है। जो हमने पहले बताया था वो दावेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव, और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दावेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में 1 बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं तो
1: बहुत अच्छा
0: बच्चे बड़े
1: लगता
0: खुश हो
1: है।
0: जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है, बस
1: बिल्कुल
0: तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना
1: बिल्कुल
0: बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जूहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे
1: क्या
0: एक मैं
1: बात।
0: पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के
1: क्या
0: बारीक बारीक
1: बात है।
0: छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए
1: क्या बात
0: और ये
1: है।
0: पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: हाँ,
0: यानी
1: बहुत
0: हमें
1: खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े
0: हाँ, यानी
1: और
0: आलू के
1: रागी,
0: बदले हम
1: हाँ
0: शकरकंद
1: शक्करकंद,
0: का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छी सुंदर
0: और
1: बताई,
0: बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की
1: रागी की
0: सेव
1: से।
0: यूज कर सकते या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि
0: गीत
1: कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट पढ़ दीजिए।
1: ठीक है। एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला।
0: दाबेली कच्ची दाबेली या डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना और पैकेट बना

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से,
1: साथ
0: भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, तो हम उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये
1: एक्स्ट्रा
0: सब डालना है, और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटन
0: कभी बनाते भी नहीं है, वो
1: से
0: पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखे
0: जाता
1: रहते।
0: है।
1: देखो हमारे साथी लिख कर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं, और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
0: सचमुच
1: हमारे
0: इंदौर
1: देश
0: बार
1: में
0: बार जाने को जी
1: जी।
0: करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, और वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
0: और
1: है
0: खूब
1: ना।
0: खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
1: बिल्कुल
0: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम
1: फिलहाल
0: स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
0: और है ना
1: रात
0: सभी को सोनाली पाठक
1: और मंशी वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को।

0: इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जी, वो बहुत प्यारा ज़माना था। और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो ज़माना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ। जी
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस ज़माने में, और आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर वो फिल्म म्यूज़िक की तो मैं बाद में बात करूंगा,
1: जी
0: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, तो ये अनाउंसर का वो
1: दर्जा होता
0: दर्जा
1: था
0: था मतलब, और
1: जी।
0: वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
1: हाँ
0: जानता ही नहीं आपको,
1: जी
0: लेकिन अगर अनाउंसर हैं आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर हैं। फिर रेडियो सिंगर होना,
1: जी
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युववाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
1: जी
0: तो जयपुर के जो पहले युववाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: क्या
0: खिलाड़ी के रूप
1: बात
0: में,
1: है
0: एक
1: जी।
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युववाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज
1: हाँ
0: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या।
1: जी
0: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
1: जी
0: और न सिर्फ आऊंगा,
1: बल्कि हेड करेंगे।
0: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूँ, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा

0: सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते हैं
0: लोग, नंदलाल शर्मा जी,
1: जी,
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे काम
1: गंगा
0: कर।
1: प्रसाद जी।
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी
0: और
1: जी
0: कर
1: जी
0: रहे थे, है ना? तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि
1: जी
0: मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो
1: वाह,
0: सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला, हम लोग
1: यहां
0: बड़े।
1: एक पल के लिए रुकना
0: जी
1: चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो
0: जी
1: जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके
0: हाँ
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही है,
1: बताएं।
0: वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं,
1: जी
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए। तो आंध्रा, उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहाँ से निकल चुके थे
1: जी
0: नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये
0: हाँ
1: जरूर
0: क्लियर।
1: इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक
0: बिल्कुल
1: बुनियाद
0: बिल्कुल
1: का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: हाँ, ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे। हाँ,
1: ओके
0: और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था।
1: जी
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी
1: वाह,
0: का तुगलक,
1: क्या बात है
0: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक
1: जी।
0: प्ले। और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधा युग, ये
1: जी
0: सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा, जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आज जयरंगम जैसी चीजें
0: हाँ,
1: चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको
0: नहीं बहुत
1: कि
0: अच्छा लगता है, बहुत
1: परंपराएं
0: अच्छा
1: आगे
0: लगता है।
1: हैं?
0: मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से वो थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए। तो

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे, और
0: जी
1: उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल,
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था,
0: जी शाही,
1: जंजर, शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे फिल्म, तो बाद में थिएटर पहले देखते
0: हाँ
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर
1: हाँ
0: था
1: हाँ
0: वो।
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका,
0: जी
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात
0: जी
1: होती थी,
0: बिल्कुल,
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दोहरी अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी
0: जी
1: होता था। और
0: ये
1: वो
0: हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: जमाना उपकार जैसी फिल्म हमने
0: जी,
1: देखी थी,
0: वाह वाह
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें,
0: जी
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात है ना, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब
0: बिल्कुल
1: दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध
0: जी
1: भारती चल रहा है, फिल्मी गाने, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और म्यूजिक
0: जी
1: ही था,
0: जी
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था,
0: अच्छा, क्योंकि गाना
1: ये
0: चलता
1: गाना चलता
0: था।
1: नहीं था,
0: जी
1: मैं गाता
0: खुद
1: रहता था।
0: गाते
1: तो वो घर वाले भी बार बार वो बोलते, तो मुझे

0: फिल्मी गानों का शौक,
1: जी
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसमें धुनें भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मेरे
1: जारी
0: ख्याल
1: रहा
0: है
1: है।
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो
1: जी
0: सिखाते भी हैं। तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया।
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प।
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था
1: वाह वाह
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका,
1: हाँ
0: जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो और गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं हम।
1: वाह वाह
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा। तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है।
0: इस नाम से किया और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा
1: जा
0: चुके थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर
0: हाँ,
1: में जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफ़ी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है। वो
1: जी
0: उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल
0: हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी जी बिल्कुल
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे ज़माने से पहले ही।
1: हाँ
0: तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था
0: बिल्कुल
1: और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: था,
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको। और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वो ही होगा कि
1: जी
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर 1 अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक।

0: थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
1: तो वहां तब
0: जयपुर।
1: तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो,
1: ऐतिहासिक स्टेशन है
0: हाँ।
1: जलंधर,
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल,
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल,
1: रहे
0: एक साल।
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर, वो उस ज़माने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को भी मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, तो शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे, सब कुछ। और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: पूरे उनके
1: बिल्कुल,
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे।
1: सुबह तक
0: तो
1: लोग सुनते
0: हाँ,
1: थे और सबसे
0: तो
1: लास्ट में उन्हें
0: हाँ,
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता
0: जी,
1: था
0: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी।
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात
0: जो।
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर,
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल
0: जी।
1: स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में मुश्किलों का मेला है,
1: वाह,

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू,
0: जाहिर है कि
1: धन्यवाद।
0: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी

0: मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
1: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
0: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला रहे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
1: हाँ,
0: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
1: मिनिमम।
0: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
1: हाँ,
0: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से, कभी वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
1: जी।
0: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
1: तो
0: या
1: आपके
0: था।
1: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा
0: हाँ
1: लगा है कि नहीं, क्या
0: हाँ
1: चल रहा है मन
0: तो
1: में।
0: बस वो उनको सूचना जरूर, और हमारे संवाद माँ से होता था,
1: जी
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना, चलना साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ, पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
1: जी जी
0: होते थे,
1: जी
0: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
1: वो
0: बताते
1: दौर भी
0: नहीं
1: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
0: थे।
1: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी दे दे
0: नहीं
1: कर
0: बिल्कुल, ये
1: दी।
0: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
1: जी
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूँ या कलाकार कला के क्षेत्र में हूँ तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, हाँ बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
1: आमने
0: सुना
1: सामने
0: है,
1: देखा। जी
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में, जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
1: जी।
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
1: ये तो एक नया खुलासा है हमारे लिए।
0: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ है, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
1: हाँ,
0: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग
0: आते
1: कर
0: जाते
1: लेना।
0: को तंग करना या मस्ती करना,
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती
0: शिकायत माँ के पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: नंबर दो था, तो
1: जी
0: पहले नाम ऐसे ही रखे जाते घरेलू
1: बिल्कुल
0: नाम,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू,
1: जी,
0: खैर तो वो छोटू की शिकायत जो है
1: रोज आ रही है।
0: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी
1: प्रोटेक्शन।
0: जो संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
1: हाँ,
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं भूल नहीं
1: उसका जिक्र ना ही
0: सकता।
1: करें तो
0: तो ये एक
1: अच्छा।
0: अच्छा बचपन बीता,
1: जी
0: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
1: अरे
0: मतलब घर में
1: गजब।
0: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे,
1: हाँ, वो अपनी दुनिया
0: वो
1: उनकी।
0: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
1: हाँ,
0: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल।
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं। मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे, और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निज मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम
0: क्या
1: आचार्य ने
0: बात
1: फिल्मों
0: है।
1: में भी लिखा,
0: जी,
1: मेहंदी रंग लाएगी।
0: डांसिंग जी के
1: हाँ
0: साथ उनके गाने हैं बहुत
1: हाँ
0: सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे,
0: अच्छा,
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था। मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन
0: ऐसे रानी।
1: ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है, क्या
1: हाँ,
0: अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: क्या
1: अब
0: बात है,
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं
0: क्या बात
1: सुनी,
0: है, क्या
1: नहीं
0: बात है।
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ मैं उठता
0: गजब
1: बैठता
0: गजब
1: था,
0: गजब, अब ये जीवन में
1: है
0: कभी भूलेगा नहीं, ये
1: ना।
0: इतनी अद्भुत है
1: मेरा
0: ये।
1: वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म
0: गर्म
1: तवे
0: तवे
1: पर
0: पर
1: पानी।
0: पानी, तुरंत खत्म।
1: जी,
0: वाह
1: तो
0: वाह,
1: और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल, मेरी
1: उनके
0: भी
1: फिल्मों
0: मुलाकात
1: में
0: रही
1: भी
0: है
1: गए।
0: उनसे।
1: जी, तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंचीय नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था, मेरे
0: जी
1: निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी। मतलब हिंदी में तो MA किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना रोल था। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: सारे अखबार आते थे। मतलब अखबार तो थे,
0: पत्रिकाएं भी
1: पत्रिकाएं
0: थी
1: भी,
0: सारी
1: धर्मयुग,
0: का।
1: दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी। तो ये मैं इन सबको चार्ट चार्ट जाया करता था, वहां जाकर के
0: वाह
1: घंटों
0: वाह,
1: घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, आके चले गए, आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे 2-3 घंटे निकल जाते थे। तो
0: जी,
1: बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था। तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में। तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी
1: वो
0: बात कह
1: सारी
0: देना।
1: बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजाज साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है।

0: अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गज़ल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गज़ल में शामिल हो गया। गज़ल को मैंने अपनाया और शायद फिर गज़ल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।

0: आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी,
1: जी
0: गजल की विधा को मैंने,
1: आपने शिफ्ट किया है
0: हाँ,
1: सिर्फ।
0: गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मेरे मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते, उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे वो, और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बोले, और यो जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है
1: जी
0: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब।
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना
0: हाँ,
1: नहीं है,
0: तो खुद
1: और
0: मैंने भी,
1: मुश्किल भी है,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मुश्किल
0: तो हाँ
1: भी है इसको
0: मुश्किल भी है,
1: निभाना।
0: तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए, सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें
1: जरूर सर, अरे स्वागत है,
0: तो
1: बिल्कुल
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है।
0: मैं जो मैं
1: जी
0: सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी, वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शब्द। और ये खास शेर है वो,
1: स्वागत है।
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उसको सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: कायदे।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहते हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम
0: थैंक
1: बहुत खुशनसीब
0: यू।
1: हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: नहीं,
1: मौजूद हैं
0: मेरे
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशकिस्मती। थैंक
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज
0: यू।
1: जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है।

0: बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
1: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
0: जी जी
1: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा,
0: जी जी बिल्कुल।
1: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
0: हाँ,
1: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
0: अच्छा खान पान था।
1: खान पान था, अच्छा मौसम था,
0: जी
1: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
0: जी
1: था,
0: जी जी
1: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था, लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है
0: जी
1: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
0: वाह
1: तो मैं
0: वाह,
1: वहाँ फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा
0: तो ये
1: उसके।
0: बहुत
1: हाँ
0: ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
1: बिल्कुल
0: होती
1: सही
0: है और
1: बात।
0: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
1: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल
1: तो वहीं
0: बिल्कुल
1: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पे एंटर हो रहा हूँ
0: जी
1: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
0: जी
1: तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
0: जी जी जी
1: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
0: जी
1: वो जयपुर में था।
0: जी जी जी
1: नाटक लिखना, कंपोज करना, प्रोड्यूस
0: बिल्कुल
1: करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
0: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे, तो
1: पला
0: आप
1: बड़ा
0: सब
1: था।
0: जानते
1: और
0: थे।
1: फिर
0: और
1: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
0: जी
1: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ, नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रोग्राम
0: कॉन्सर्ट्स होते
1: करे,
0: थे
1: कॉन्सर्ट होते थे,
0: जी,
1: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
0: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
1: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
0: जी जी
1: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में न्यूज हेडलाइंस हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,835 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही राज्य के सतत और समावेशी विकास की आधारशिला बनेगी। सुश्री भूरिया आज महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चाइल्ड बजटिंग इन मध्य प्रदेश विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। और बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से मात्र 33 मिनट में हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मान्या शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, नारी सशक्तिकरण और उसमें युवाओं की भूमिका। दोस्तों, नारी सशक्तिकरण के बारे में सुनते ही कई लोग इसे सिर्फ बड़े बड़े भाषणों या नारों से जोड़ने लगते हैं, लेकिन सच कहें तो इसका सरल मतलब है महिलाओं को वो सम्मान और सुरक्षा और आज़ादी मिलना जिसकी वे हकदार हैं। दोस्तों, इस विषय पर आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सशक्तिकरण का मतलब केवल नौकरी करना या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हर लड़की अपने फैसले खुद ले सके, बिना किसी डर के अपनी बात रख सके और अपने सपनों को खुलकर जी सके। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान चुके हैं, लेकिन असल में वो काफ़ी गलत हैं। आज भी समाज में लड़कियों को छोटी छोटी बातों पर जज किया जाता है, जैसे अगर कोई लड़की देर शाम बाहर हो तो सबसे पहले उसी पर सवाल उठाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की अपनी पसंद के कपड़े पहने या बस खुलकर अपनी राय रखे तो भी लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। लेकिन क्या अपनी पसंद से जीना गलत है? क्या हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं होना चाहिए? हमें समझना होगा कि महिलाओं की पर्सनल चॉइसेस, जैसे उनका पहनावा, उनका करियर, उनकी लाइफस्टाइल, ये सब उनका अपना अधिकार है।

समाज को उन्हें जज करने का कोई भी हक नहीं है। फिलहाल सबसे जरूरी मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। आज भी लड़कियां घर से बाहर निकलते समय अपने पेरेंट्स को अपनी लाइव लोकेशन भेजती हैं, रात में अकेले जाने से डरती हैं या पब्लिक प्लेसेस पर असुरक्षित महसूस करती हैं। सोचिए जिस देश में महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, वहां अगर एक लड़की सुरक्षित महसूस ना करे तो ये कितनी शर्म की बात है। और महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानून या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और हम चुप हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उस गलत हरकत को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म को लेकर मीम्स बनते हैं, कई लोग फेमिनिज्म का मतलब बिना समझे ही उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फेमिनिज्म का असली मतलब पुरुषों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर एक लड़की अपने सपनों के लिए आवाज़ उठाती है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि उसका अधिकार है। और समाज में समानता लाने के लिए ज़रूरी है कि हम फेमिनिज्म को मजाक की तरह नहीं, बल्कि एक ज़रूरी सामाजिक सोच की तरह समझें। और ये तब होगा जब हम छोटी छोटी बातों पर महिलाओं का मनोबल गिराना बंद करेंगे। जिस तरह औरतों की ड्राइविंग पर सबकी राय अलग होगी, लेकिन सवाल ये है कि ड्राइविंग का शौक या स्किल्स जेंडर से कैसे तय हो सकती हैं। आज महिलाएं फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें स्टीरियोटाइप्स में बांध कर रखेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। हमें ये समझना होगा कि टैलेंट और कैपेबिलिटी का जेंडर से कोई संबंध नहीं है। अब अगर बात करें युवाओं की, तो युवा ही वो ताकत है जो समाज की सोच बदल सकते हैं। आज का युवा एजुकेटेड है, अवेयर है और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। अगर युवा चाहे तो वो ऑनलाइन हेट के बजाय अवेयरनेस फैला सकते हैं, सेक्सिस्ट जोक पर हंसने के बजाय उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव भी काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। इसलिए ज़रूरी है कि हम महिलाओं को सिर्फ सम्मान देने की बात ना करें, बल्कि उन्हें बराबरी से देखने की आदत भी डालें। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देंगे, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ हर लड़की बिना डर और बिना झिझक के अपने सपने पूरे कर सके। आज

दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आत्मसम्मान। दोस्तों, आज के समय में हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमें एक्सेप्ट करें, लेकिन इस भागदौड़ में कई बार हम खुद की वैल्यू करना भूल जाते हैं। यहीं से शुरू होती है आत्मसम्मान की ज़रूरत। आत्मसम्मान यानी खुद की इज्जत करना, खुद को समझना और अपनी अहमियत को पहचानना। ये घमंड नहीं होता, बल्कि अपनी अस्तित्व की कद्र करना होता है। आज का युवा सोशल मीडिया के दौर में जी रहा है, जहाँ हर दिन कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है, किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या कोई ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई देता है। धीरे धीरे लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और यहीं से उनका मनोबल कमज़ोर होने लगता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर इंसान अलग है और दूसरों के जैसा बनने के चक्कर में खुद की पहचान खो देना सही नहीं है।

दोस्तों, आत्मसम्मान का मतलब ये भी है कि हम अपनी फीलिंग्स और चॉइसेस की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई हमें बार बार नीचा दिखाए, हमारी बातों का मजाक उड़ाए या हमें कमज़ोर महसूस कराए, तो वहाँ अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। कई बार युवा सिर्फ इसलिए ना नहीं कह पाता क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हर बात में दूसरों को खुश करते करते अगर इंसान खुद दुखी रहने लगे तो वह सही नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में ना कहना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान खुद को महत्व देता है, तभी वह इमोशनली स्ट्रांग बन पाता है। एक व्यक्ति जो खुद की इज्जत करता है, वो कभी गलत चीज़ों के दबाव में नहीं आता। वो अपनी अलग सोच रखता है, सही फैसले लेने की कोशिश करता है और गलत संगति से दूर रहता है। लेकिन याद रहे, अपने साथ साथ कभी दूसरों के आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी फीलिंग समझें, तो हमें भी दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर लोगों का मजाक उड़ाना, बॉडी शेमिंग करना या ट्रोलिंग करना एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन हमें समझना होगा कि शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। कुछ पलों की हंसी के लिए किसी की निंदा करना किसी भी तरह से सही नहीं है। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी सोच है, और अगर युवा खुद पर विश्वास करना सीख जाए, तो वो ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। हमें दूसरों के अप्रूवल से ज़्यादा अपनी मेहनत और अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली पहचान हमारे कपड़ों, लुक्स या फॉलोअर्स से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच से बनती है। और कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है, तभी दुनिया भी उसकी वैल्यू करना सीख जाती है। दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच के साथ

दोस्तों, आज हमने बात की महिलाओं की सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारियों के बारे में, और साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे जीवन में आत्मसम्मान का कितना महत्व है। आशा है कि आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी बांटेंगे। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं मान्या शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे युववाणी के अगले कार्यक्रम में एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान में सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना मास्टर सलीम की आवाज़ में है, गीत गुलजार का, संगीत विशाल भारद्वाज का, फिल्म का नाम है सात खून माफ़।

हेमा सरदेसाई और मलेशिया वसुदेवन की आवाज़ में सपने फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। बोल जावेद अख्तर के थे और संगीत एआर रहमान का। कार्यक्रम का अगला गीत रफ़कत अमानत अली और अलका याग्निक की आवाज़ में है। गीत अहमद फराज का, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है कृष।

शंकर महादेवन और चित्रा की आवाज़ में 13B फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। बोल नीलेश मिश्रा के थे और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना, इस गीत को आवाज़ दी है आतिफ असलम ने। फिल्म का नाम है हम चार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम व्यू पर, ये आकाशवाणी जबलपुर है। आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। अभी 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा प्रीतम सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत। 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी सुनीति महेश्वरी। 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा कृषक उत्पादन संगठन, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राजकुमार पटेल। 8:00 सुर्खियों में यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 8:15 से आप आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का, और 10:30 पर होगा फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मनभावन। 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित जसराज का गायन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। वक्त हो रहा है इस घंटे की खास खबरों का, हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना मंजूर की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के उच्च मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगफनी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1,835 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार, सुशासन और जनसेवा के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपर्क अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 मई को वृत्त ग्वालियर अंतर्गत विभिन्न

0: क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, अब सुनिए NCERT का कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
3: जी
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
3: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
3: जी
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
3: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है,

0: आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं? ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी जी जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी,
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी।
5: अब मेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ
4: चलो,
5: पे पानी होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों, पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: हवा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
2: नहीं समझी?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
0: आ, आ,
2: तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
2: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुका, रुका! जाओ वहीं रुक जाओ, रुका!
3: कौन हो तुम?
5: शाम मैं एक चरवाया हूँ।

0: साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
1: क्या सूचना?
0: साहब, दुश्मनों के बारे में।
1: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
0: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
2: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
0: सर, हम एक चरवाया है।
2: आगे बताओ।
0: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
2: क्या देखा तुमने?
0: साहब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
2: क्या?
0: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
2: कितने लोग रहे होंगे?
0: साहब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
2: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: साहब, मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
3: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
4: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
3: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
4: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
3: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
4: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
3: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
4: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
5: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों

0: पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है, और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
0: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
2: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
0: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी, यस सर।
0: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर।
3: उधर से।
0: हाँ जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
1: जी सर।
0: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
1: जी सर।
0: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
1: जी सर।
0: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
1: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
4: यस सर,
0: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
1: जी जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
1: सर, जी सर।
0: कोई शक?
1: नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
4: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
5: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
5: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
5: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
5: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
5: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर। जी सर।
5: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
5: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे।
3: धीरे धीरे धीरे।
5: बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे।
5: जी सर। कोई भी उठकर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
3: हाँ सर।
5: एवरीबॉडी रेडी?
4: यस सर।
3: यस सर।
0: अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है।

0: कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:30 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रीतम सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रीतम सिंह ठाकुर के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सुनीति महेश्वरी।

सुनीति महेश्वरी की आवाज़ में ये भजन आपने सुना और अब आपको सुनवा रहे हैं गीत। रचना लक्ष्मी नारायण खरे की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुनीति महेश्वरी की गाई रचनाएं।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7 बजने को है, समाचार कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में

0: 625 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet has approved increase in minimum support prices or MSP for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
1: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया.
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप. द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर. विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore रुपीज. द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन.
1: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 800

नमस्कार, समाचारों के साथ में शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की।

0: अभिनेत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का एक लेख साझा किया है। इस लेख में पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशनों और बेहतर रेलवे नेटवर्क से हो रहे विकास का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है और क्षेत्र में अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों में अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की उनकी अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। डॉक्टर यादव ने सभी मंत्रियों अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए, इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है, मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 43 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर अहम बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीज को लेकर हुई है। सरकार इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल खरीदेगी।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स है उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। CBSE ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश के भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहा और यहां केवल 79.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तिरुवनंतपुरम में रीजन 95.62% के साथ देश में सबसे आगे रहा। विद्यार्थी CBSE की वेबसाइट डिजीलॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। डॉक्टर यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
1: 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया। आज 34,00,000 महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा ताकि दूध का उत्पादन कर

0: करते करते घर के अंदर पशुपालन करते हुए जो भी पशु पाल सकते हैं आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है।
1: महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिब्वेवाड़ी इलाके में गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया था। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जाँच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों को मार्कशीट और डिग्री डिजी लॉकर में अपलोड करें, साथ ही हर छात्र को स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इससे देश के बेहतरीन शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि 31 मई तक छात्रावासों में किचन नहीं बने तो सीधी कार्रवाई होगी। 15 मई से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगी, जिसमें 4000 ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों को 10,000 रुपये महीना सहायता योजना का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। सरकारी काम में नवाचार और बेहतर जनसेवा के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। 15 जुलाई 2026 तक awards.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई को ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर लगाएगी। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अशोकनगर में जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया गया। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात थाना प्रभारी और एनएचआई अधिकारियों ने पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में जनगणना कार्य को सुचारू और असरदार बनाने तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत, तालाब, बोरी, बंधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552G सहित जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में 18 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 4,537 किसानों से 23,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। नीमच में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। देवास जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी और 23 जून को वापस लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का MSP बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। इस बुलेटिन इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया भौजी जिज्जी अरो के सरला बिना की राम राम। देखो किसान भैया अरो, आज तो पहले अपने मन को गुबार आप औरों के संग मिल के निकाल हैं, फिर कौनो और बतकाओ हम कर हैं। अब आप और के हो कि ऐसो काय बिन्ना, तो भैया आज सवेरे से का भाओ हमारे घर वाले से हमारो झगड़ा हो गो, सकारी सकारी उन्होंने लड़ाई झगड़ा करो शुरू कर दो। मतलब कहवे की बात है कि ऐसी कौनो बात बोली कि हमारा दिमाग खराब हो गो। हमोरन की तू तू में ये बात में भाई भैया कि बे चाहे जब कहे थे, पहले तो मजाक में कहे थे लेकिन कभी कभी तो मजाक मजाक भी अच्छी नहीं लगे, तो हमें सोई गुस्सा आ गई। तो बे का कहे थे कि तुमोरन को काम ही कर रहे थे, तनक सी रोटी बना दई, चौका बासन कर दो, होना कपड़ा धो ले और दिन भर घर में रह के बस आराम ही तो करती रहती हूँ। अब बताओ भैया बार हमें सुनत सुनत आज हमें बेजा गुस्सा आ गो। आज तो भैया घर के बाहर को तापमान और हमारे घर को तापमान बराबर सो लगत रहो हमें तो। हमने कही कहवे में कितो आसान लगे थे कि का करती हो तुम्हारे मनो, हमें ही लोग जाना थे कि घर के कितने मुत के लोग काम होते। जाड़े को मौसम आओ तो का कहते हैं कि रोटी किस्म किस्म की बनाओ, बिर्रा की, कहूँ जुनार की, कहूँ रागी की, कहूँ बाजरा की। अब बिर्रा की, जुनार की, रागी की, बाजरा की रोटी बनाने में ऐसे ही थोड़ी ना बन जाती हैं कि रोटी कह दई और रोटी बन गई। अब इन सब अनाजों के सोचो जरा धो के साफ करके बीन के फटक के जब ओके फिर पिसात हैं या कभी खुदाई पीसत हैं चकिया में, तब कहूँ भी जाके रोटी बनती हैं। तो एक तो आसान आएगा, ऐसे ही जाड़े में किस्म किस्म की चटनी आंवले की बना दो, अब रोटी बन रही हैं तो आंवले की चटनी बना दो, बिही की चटनी बना दो, टमाटर की, कहूँ लहसुन की। संगे संगे भैया मोड़ा मोड़ इनकी अलग फरमाइश है, कहूँ उन्हें रोटी सब्जी नहीं खाने, दाल चावल नहीं खाने तो हलवा खाने हैं, तो कहूँ पोहा खाने हैं, बेसोई नर्रत रहते हैं। तो अब हमोरन की तो कैसी आफत हो, तो हमोरा ही जाना थे। अब जो गर्मी को मौसम चल रहा हो तो ए में सोई आम लाखे दे दे हैं धर दे हैं, ओके हैं चटनी बना दई खाना में, कहूँ पना बना दई और ने भाओ कछू आम ने भय तो लौकी या ककड़ी को रायता बना दई। तो अब लौकी के से में ओके छील हैं कैसे हैं, फिर ककड़ी के छील हैं कैसे हैं, तो फिर ओके बघार सोई लगाने पड़त रायता को। तो कहबो कितो आसान होते भैया, मतलब उन्हें टठिया पूरी भरी चाहिए होते, ऐसो नहीं है तनक भी रोटी सब्जी बस दे दी तो वो नहीं है, वो पूरा नहीं होता है। तो जो गर्मी में जे अलग चीज़ें बनती हैं, बेल आ रहे हैं कब कहूँ खेत से बेल ले आए दो चार ठो, बस खेत से आके तो खाना के बाद फिर बेल को शरबत पी हैं तो वो बना के रख दई हो, मतलब स्वाद सोई मुत के लग हैं, मनो कह वो न छोड़ है कि का करती हूँ। अब बताओ भैया इस समय अनाज धोखे सुखा के साल भर के लाने रखने पड़ा थे, तो अब हमने सब वो सब इतने दिना लो हम बोई करत रहे, तभी तो आप औरों से बतकाओ के लाने इतने दिना तक नहीं आ पाए। सभी मसाले बीने हमने फटके उनके फटक के रखो, सुखा के जो सुखावे वाली चीज़ें हती उन्हें सुखाई साल भर के लाने, अब इंतजाम करके हमने रख दो, फिर आज आप औरों से

भत्काव कर भी के लाने चले आए। अब ऐसी भैया, अब आम को अचार साल भर के लाने धरने पड़ा था थानो, तो ओके लाने भी आम लाके दे दे, अब आम लाके दे दे तो ओके अथानो रखवे में कितो तो समय लगत है। फिर कहूँ कटहल सोई ला दो, वो को स्वाद चाहिए, कटहल को अथानो सोई रखने हैं तब वो सोई ला दो, वो में कितो टाइम लगत है। अब कोनो जादू की छड़ी तो नहीं होता है हमोरन के पास कि बस घुमाई और काम होगा। तो भैया हरो, हमारे एक तो बोलत नहीं है, और अगर काम के लेखे कोनो ने तनक उंगरिया करी कि ज्वालामुखी जैसे हमारे फूट पड़े थे। अब भैया काय ने फूट पड़े, काय कैसे दिन भर जो सवेरे से लगे रहे थे, 5 बजे सवेरे सकारे उठ जाते हैं और रात लो हमोरन के लेट भी तक को समय नहीं मिला था, तनक सो आराम करवे को समय नहीं मिले। दिन भर मोड़ा मोड़ियों की छुट्टी भई तो उनकी फरमाई से सुनो, कहूँ आप औरों की फरमाई से तो सब दिन भर करत करत रत रात ही है तनक पीठ सीधी करवे को समय मिला थे। मनो भैया, और फिर ऐसी बात है तो आप और सोई भोजी हरों के ऐसो कहो उन्हें बोलियो कि भाग्यवान का करती हूँ, बल्कि ऐसो करने हैं कि उनके काम की तारीफ कर लाए करने तनक। तनक जा बोल दे करने कि थक गई हूँ, अब बाद में काम कर लइयो। तो भौजी हरन को उत्साह तो सोई दुगनो हो जे है। ठीक है ना भैया, हमने साची कही ना, और अब साची कही मगर मुझ को कह दई है, अब नहीं बोलने का, कैसे तो मोरन को सोई दिमाग गर्म हो जे है तो फिर आफत हो जे है। मनो ये मन के ठंडक देवे के काजे अपनो पूरो इंतजाम हमने कर लो है।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ तो किसान भैया हरो, सुंदरलाल विश्वकर्मा भैया ने तो उमदा सो लोकगीत सुना दो है और मन प्रसन्न होगा। अब तनक सी बात और हम आप और के बताए वाले थे कि हमारी और हमारे घर वाले की जब नोक झोंक हो रही थी तो उस समय होते ही पे हम मोड़ा बैठ के पढ़ रहे हो तो और सुनिए देखियो का कौन सी कविता वो इस समय पढ़ हुए लगो कि वो जो है ना कौन अपने ते कवि हते कौन बे मैथिली शरण, हाँ मैथिली शरण गुप्त, तो उनकी एक कविता भी लाइन है कौन सी, नर हो ने निराश करो मन के ऐसे कछु हैं, हमें तो पूरी नहीं आता है, तो बस काम करो, बस काम करो इतो हमें ज़रूर समझ में आओ, तो वे कविता की लाइन है वो पढ़ाते रहो। वो ही समय पढ़े जब हम आई हम दोनों की नोक झोंक भई और यही बात पे उनने हमें बोली है थी कि बस काम करो तुम्हारे करती कहो दिन भर आराम करती हूँ, तो हम मोड़ा हुई समय सुना सुना के कविता लगू पढ़े हुए, तो हमें सोई और गुस्सा आई, हमने वो की एक जड़ दो और डांट दो मनो, फिर तनक देर बाद हमें पछतावा सोई भाव किशन भैया, और फिर उसे हमने बात करी, उसे तनक माफ़ी मांगी और वो के संगे बैठ गए, कागज वो रुआँ सो सोहू को हमने की यार हमने अपनी गुस्सा ऊपर निकाल दी, तो हम वो के संगे बैठ गए, हमने की राहुल बताओ तुम का पढ़ रहे हो, कल परीक्षा है ना तुम्हें तुम्हारी, तो उन्हें की हाँ अम्मा कल परीक्षा है और यही कविता याद करने आती तो तुमने हमें मार दो और एक ठो निबंध, और बहन जी ने कही है कि तैयार करने, तो हमने की काय पे लिखने हैं वो निबंध, तो कहने लगू अम्मा फकरुद्दीन अली अहमद के बारे में बहन जी पूछें कल, तो हमने की चिंता न कर अब जो कौन आए बेटा हमें तो नहीं पता है, तो राहुल ने बताई कि जे अपने देश के 5वें राष्ट्रपति हते, ये अपने सादगी और विनम्रता के लाने जाने जाते थे, तो समझ आ रहा है ना अम्मा, तो हमने कही हाँ हाँ काय नहीं आगे पढ़ो हम सुना जे हों तुम्हें याद सोई हो जे है जो निबंध और कल बहन जी बहुत अच्छे से पूछ ले हैं तो तुम बता दे हो, राहुल बोलो हाओ, तो सुनो अम्मा उनको जन्म आज की दिन 13 मई 1905 में दिल्ली में भाव है, तो उनने कैम्ब्रिज से शिक्षा पाई और 1928 में लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की उपाधि सोई लई हती, तो हम राहुल कह लोग अम्मा जो कहाँ है कैम्ब्रिज और लंदन जो नाम ये में दो है, तो हमने कही देखो किसान भैया रो हमने सुई कह दे कि हमें का पता तुम्हारे पिताजी कभी ले गए हो तो हमें पता हो, जौन हमें पता नहीं है तो हम कैसे बता देंगे, और जो तुम का कर रहे हो तनक अटक अटक है कैसे पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ो बेटा, तो फिर उन्होंने कि ठीक है अम्मा पता है जे जो उनकी बात अपन कर रहे हैं फकरुद्दीन अली अहमद, तो इनको जे 24 अगस्त 1974 में राष्ट्रपति बनी हती अपने देश के, और जे बहुत सरल और विनम्र स्वभाव वाली हते, इनको निधन फिर 11 फरवरी 1977 के राष्ट्रपति भवन में दिल को दौरा पड़ो तो निधन हो गो, तो अब हमने कही कि बेटा अब याद होगा ना निबंध अच्छे से तुमने हमें सुना दो, और अब तुम ऐसे ही बिल्कुल बहन जी के सोई सुना दई हो तो तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाए, राहुल कह लो हाँ अम्मा हम तो सुना दे हैं अच्छे से, मनो पिताजी कहाँ चले गए तुम और उनकी लड़ाई झगड़ा हो गई तो अब कहाँ चले गए, तुमसे कचू बताए नहीं हमने कि देख बेटा राहुल कहाँ जे हैं, वो तो चौपाल पे सबरी किसान भैया हरों के संगे बैठे हुए हैं, अब

0: खेती किसानी को काम कर रहे थे, तो खेती किसानी की चिंता, तो सुना था कि सभी जो कौन जो कृषक संगठन हो थे संगठन अंगठन बना भी क्यों नौरन की बात हो रही थी, तो लगा तो ही खिलाने गए हैं। तो जो का हो थे अम्मा राहुल कहन लोग, हमने कही अब हमें सोई नहीं पता है, हमें पता हो तो हम काय खिलाने तुम्हें ना बता देते। राहुल बोलो मोड़ा कहन लोगो लो अभी अपन पता कर लिए थे कि जो का हो थे जो रेडियो चालू कर दो और जो ये में से पता चल जाए है कि कृषक उत्पादन संगठन का होत है और काय बनाओ जाते हैं। तो हम राहुल कहन लोग अपन दोनों मिलके सुन लिए थे और जब जानकारी सोई मिल जाए तो हमने कही कौन बताया है बेटा जब बात, तो कहन लगो कि जे राजकुमार पटेल भैया हैं जे बते हैं और इनसे बतकाव कर रही हैं प्रभा बिन्ना, तो अपन मिलके सुन लिए थे।
1: किसान भैया बहनों, आज अपनी चौपाल में आए हैं डॉक्टर राजकुमार पटेल साहब। आप सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में। आज आप अपन को जानकारी दे हैं कृषक उत्पादक संगठन के लाभ एवं उपयोगिता के बारे में। डॉक्टर साहब राम राम, आप हमारी चौपाल में आए, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद प्रभा बहन, आपने हमको इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया कृषकों के लाभ के लिए।
1: डॉक्टर साहब, अपन देखत हैं कि चारों तरफाऊँ कई तरह के संगठन अपन को दिखाई दे जाऊत हैं, कछु झनों से मिलवे जुलवे को मौका मिल जाऊत है, पे कृषक उत्पादक संगठन का होत है तनक बताओ।
2: कृषक उत्पादक संगठन अन्य संगठन है जैसे होत है, इसमें का होत है कि आधुनिक पद्धति में कृषि में जो है लागत बढ़ जा रहा है।
1: अच्छा।
2: लागत का बढ़ावा घटावे खातिर व्यावसायिक रूप से संपादित करे के खेती खातिर और सीमांत और लघु किसानन खातिर सामंजस्य स्थापित करके उनकर जो संगठन बनावा जाता है उन्हें कृषक उत्पादक संगठन कहा जावत है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जी कृषक उत्पादक संगठन की का जरूरत पड़त है?
2: कृषक उत्पादक संगठन की जरूरत यह है कि आजकल जो उन्हें तो भारत देश में खेती के सब महत्वपूर्ण स्रोत है, खेती के रकबा लगातार घटत जाता है, वह छोट सीमांत किसानन के जो उन्हें तो आजीविका आजकल बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि कैसे कि वो आजीविका जीवित करें। उनके लाभ खातिर छोटे सीमांत किसानन के लागत के घटावे खातिर कम ब्याज में उपलब्ध ऋण करावे खातिर गुणवत्ता पूर्ण बीज उपलब्ध करावे खातिर उनका जो है संगठित हो कि अनुसंधान करे की जरूरत है, वह वही के सबके समस्या के निदान खातिर कृषक उत्पादन संगठन जो है बनाए गए हम जौनन खातिर प्रति इकाई उत्पादन घटा दिन जाते और इनकर उद्देश्य जौन रहा था कि किसानन के समस्या का समझ के उनका निदान किन जाए, यह उनका पर प्रथम उद्देश्य रहा था।
1: जो तो बहुत ही उम्दा बताओ डॉक्टर साहब आपने के सब संगठित हो जाए, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं, मानो जो संगठन बनाओ कैसे जा सका था?
2: कृषक उत्पादक संगठन बनावे खातिर पहले तो क्षेत्र के चयन की जा चाहिए कि किस क्षेत्र में ये कृषक उत्पादक संगठन काम करे, फिर हम कहा कि सदस्य का इकट्ठा करके उनसे उनके बारे में चर्चा की जा चाहिए। चर्चा के उपरांत जौन है तो उनकर का जरूरत है, का समस्या है, का ओखर निवारण किन जाय चाहिए, उन सब खातिर तय किन जाय चाहिए। ओके आधार पर उनकर आवश्यकता के प्राथमिकता तय किन जाय चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर उनका का संभावना है, का ऊ कह सका था माँ, ओके हिसाब से सामूहिक प्रबंधन के रूपरेखा तैयार करी चाहिए। जब सामूहिक रूपरेखा के प्रबंधन तैयार हो जाए तो उनका कहा है कि औपचारिक एक गठन कार्यकारिणी करे चाहिए के अध्यक्ष हो के सचिव हो।
1: हाँ।
2: वह हिसाब से उनका फिर ओके हिसाब से कोखा संचालित करी, संचालित करी तो केखर का काम रही और संगठन में यह तरह के सब संचित हुई और फिर वो आपस में चयन करी आपस में के हमारा अध्यक्ष रही। ओके हिसाब से फिर वो निर्धारित करी कि नीति का हुई प्रचार प्रसार कैसे कराई।

0: के सदस्यता खुली हुई होती है, को सदस्य हो सका था वहाँ जेखर मन मेजा मिला था भाई वहाँ। दूसर चीज क्या, लोकतांत्रिक नियंत्रण रही, मतलब यह न हो कि केव ओकर मालिक बन जाई, जे सब को जेखा चाहिए कि वो अध्यक्ष रहा, जे सचिव रहा, जे निर्णय ले, उस तरह के प्रबंधन मंडल तैयार किए जाता है। प्रबंधन मंडल तैयार करे के बाद सब सदस्यन का एक निश्चित सीमा में पूंजी लगावे पड़ा था, वह हिस्सा उनकर हिस्सेदारी और कृषक संगठन में रहा थे भाई। कृषक संगठन लगभग जो है स्वायत्त होता भाई, मतलब ओकर कार्यकारिणी खुद ही निर्धारित किए जाते और वो संगठन जो उन्हें नियंत्रण और सदस्य करा था मा, और सदस्य से निर्णय ले था मा कि शिक्षण प्रशिक्षण और सूचना कहाँ से प्राप्त करे क्या कत्ती लागत आवे।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे कृषक उत्पादक संगठन काम धंधो जो कछु भी करते हैं तो उनमें कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सी गतिविधियां संचालित करवे के लाने अपन शामिल कर सकते हैं जब
0: संगठन बने। उत्पादक संगठन सब लगभग सलगी समस्या निर्धारित करते हैं, पहले समस्या निर्धारित करते हम और समस्या के हिसाब से ऊ अपन निदान देते हम, जैसे उनके कौन के बीज थोत थो लेकर रहा छोट छोट किसानन का, तो बहुत भारी मात्रा में थोक में खरीद लीन और सस्ते दाम में अपने सदस्यन के बांट दीन। बीज, उर्वरक, कीटनाशक और जौन जौन गुणवत्तापूर्ण चीज रहा थी जौन किसानन का खेती में लागा थी ओखा वो इकट्ठा खरीदा था माँ, और जब तक किसान की जरूरत है वह किसान की जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनका बांट दिन जाता है। वो यह कह सका था माँ कि जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर आजकल चल रहा है वह जौने माँ एक आदमी सलगा सामान खरीद ले था वह या सम्मिलित होकर कई एक जने शरीर लीन और जेखा जितनी जरूरत पड़ा थी वह कल्टिवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर, ये सब अपने अपने समय से 2 घंटा 5 घंटा जेखा जितना जरूरत पड़ी ओखा उपयोग करा था।
1: हाँ।
0: और बीज तैयार करा था मैं, सफाई कर लेते था मैं एका सब कुछ, और कुल मिला के बाजार रेट में उपलब्ध करा दे था सस्ते सस्ते में और ज्यादा फायदा लेके।
1: हाँ।
0: भंडारण की सुविधा उपलब्ध करा दे था मैं, बाजार उपलब्ध किसानन का नहीं हो पावा था, किसानन का बाजार उपलब्ध करावे खातिर व्यापारी से बहुत समस्या झेल पड़ा था भाई, तो वह सब चीज खातिर कृषक उत्पादक संगठन उनका मदद करा था भाई और बेहतर मोल भाव कर पावा था मां। जब वो संगठित रहा था किसान लोग तो उनका ज्यादा मोल भाव कर ले था मां, ज्यादा अच्छे दाम में बेच पावा था मां। सबसे बड़ी समस्या का आवा थी वह असंगठित किसान का ऋण की बहुत बड़ी समस्या आवा थी वह कि उनका ऋण नहीं मिल पावा था।
1: हाँ।
0: जो पैसा उनके पास रहा था वो पैसा का प्रबंधन कहाँ कितना कितना पैसा खर्च किए जाए यह सब चीज उनको नहीं पता रहा है। लेकिन जब संगठित हो जाता वहाँ तो व्यावसायिक लोग आवा था मदद करा था और उसे संगठन व्यवस्थित चला था वह सबके हिस्सा में लाभ ज्यादा आवत
1: है। बिल्कुल जी, तो कई बार की ऐसी सुविधाएं हो गई संगठन के माध्यम से अपने किसान भैया हरे एक दूसरे से मिलजुल के सभी बन्नी बातों को फायदा ले सकते हैं, अपने दुख दर्द बता सकते हैं संगठन के लोगों हैं। मनो डॉक्टर साहब जैसे कोई भी संगठन होवे, कृषक उत्पादन संगठन गठन के पहलाऊ और गठन के बाद कछु चुनौतियां सुई आउत हुई है तो उन पे सुई अगर आप नजर डारो तनक।
0: बिल्कुल, संगठन जब बना था कोनो चीज तो बहुत सारी चुनौतियां आवा थे भाई, गठन के पूर्व आवा थी, गठन के बाद आवा थे भाई। अब जैसे गठन के पूर्व सबसे बड़ी चुनौती ये रहा थे भाई कि कौन को जैसे किसान उतना जागरूक नहीं रहा।
1: हाँ।
0: तो कौन को प्रमोटिंग एजेंसी रहा थी, कौन को बतावे वाली, बढ़ावे वाली, और कृषक कैसे के संगठित हों का उनके मेजा सब मिल जाए, सबके मोल मतलब सबका फायदा हो, ऐसा करे खातिर कौन एजेंसी रहा थे वह। हाँ। एजेंसी का ढूंढना बहुत जरूरी होता है। दूसर चीज यह होता वह कि हर संगठन के एक नियम होता वह कि एक काम खातिर ये संगठन बनावा जा रहा है, तो यह काम के यदि संगठन के उद्देश्य नहीं है तो संगठन के उद्देश्य के अभाव में संगठन विफल हो जावा करा था। दूसर चीज यह है कि कृषक उत्पादक संगठन बनाए के बाद का चुनौती आ सका थे, बनाए के बाद सबसे बड़ी चीज यह है कि किसानन के पास वित्त के साक्षरता कम होवा करते, तो जब वित्तीय संस्थान से ऋण ले कहावा बैंक ले है तो उनका जब नहीं जानकारी रहे तो वह बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होते। दूसर चीज समय पर बाजार के जानकारी उनका नहीं मिल पाई तो कौन समय में कौन सामान तैयार कराए के ये चीज की उपलब्धता नहीं रहती है। तीसर सबसे बड़ी समस्या आवा थी वह कि पेशेवर कर्मचारी यदि नहीं मिल पाए तो संगठन का चलावे में व्यावसायिक रूप से बड़ी बाधा आवा थे वह। और सबसे बड़ी चीज समस्या ये आवा थे वह कि किसान भाई इनके पास भंडारण के, परिस्थितिकी तंत्र, ये

0: प्रसंस्करण के व्यवस्था नहीं रहा करत, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। साथ साथ में कृषक भाई इनका प्रशिक्षण समय समय पर कौशल विकास क्षमता संवर्धन ये सब जौन है कीन जाए चाहिए, जौन पर बहुत ध्यान दे के आवश्यकता रहा थी वह, और जौन किसान भाई नहीं दे पावा यहीं से कबो कबो किसान संगठन विफल हो जाता।
1: तो कोई संगठन विफल न होवे और सब सफल होवे। डॉक्टर साहब कहते नहीं कि चार जनों के लाकड़ी और एक जने को बोझ, सो जब चार जने मिल जोड़ के कोई काम करवे की ठान लेते तो वे सब काम सफल हो जाते। आप डॉक्टर राजकुमार पटेल साहब हमारी चौपाल में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रभा बहन, धन्यवाद।
2: Hey guys, hey, आज तो पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
7: देखो किसान भैयारो, कहे थे ना कि जीवन में भगवान सब कछु खावे पीवे दे थे, मनो कोनो ने कोनो तनाव जीवन में जोड़ सोई दे थे। अब बात ऐसी है कि हमारी बड़ी जिज्जी हैं, उनके अपने छोटे मोड़ा से लेके भी बहुत परेशान रहती। ने पढ़ाई करवे, ने पढ़ाई वो ढंग से करे, ने खेती किसानी को काम धंधा वो में मन लगाए। बड़े मोड़ा मोड़ी को तो उनने ब्याह कर दो। अब का है भैया, मोड़ा की जिद का है सुन लो। वो कहते हैं कि एक डेयरी खोलने हैं ओखे, जौन से ओखे मन में ऐसा लगा थे कि जौन से मुनाफा हुआ है, तो अब बस हम वही काम कर रहे हैं और कौन हमें खेती किसानी को काम नहीं करने आए। अब कोनो भी धंधा, नव धंधा शुरू करने हैं तो काजे तो धन पैसा की ज़रूरत होते है। तो अब जिज्जी वही चिंता में दिन रात रहती। एक दिन हम गए, जिज्जी ने हमसे सारी बातें बताई। हमने कही चिंता मत करो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाए। तो कहन लगी जा योजना काय के लाने हैं बिन्ना, जा भी तो बता दो। हमने कही बस यही के लाने, तुम्हारी चिंता दूर करवे के लाने, जो उनकी भैया भौजी हरन खे कोनो छोटो काम धंधा अगर शुरू करने हैं या धंधा अगर चल रहो है और ओके आगे बढ़ाने हैं तो बिना गारंटी के बैंक से लोन दो जात है। तब जिज्जी बड़ी खुश हो गई और थोड़ी उत्साह से पूछने लगी कि कौन कौन से धंधा के लाने जो लोन में मिला थे। अब देखो बिन्ना, हमाओ मोड़ा जोन है ना, वो तो कहे थे कि हमें डेयरी शुरू करने हैं, डेयरी खोलने हैं और इतना ही शहर के पास में हमें खोलने हैं। तो हमने कही जी देखो भौजी हरों के जैसे वे तैयार हो जाते हैं, लड़कियां शादी हो जाती हैं तो वो पार्लर के लाने, और अगर कोनो सिलाई सीखती हैं, सिलाई को काम करती हैं तो सिलाई के लाने, या फिर भैया हरे जोन किराना दुकान खोल वो चाहते हैं, या फिर अपने जोन खेती किसानी से जुड़े भैया हरे हैं वे अगर काम के लाने वे लोन ले वो चाहते हैं तो वे लोन ले सकते हैं। तो जो लोन बैंक से या कोनो सरकारी संस्था से लोन मिल सका थे, दोनों तरीके से मिल सकते हैं। और देखो जी एक के तीन प्रकार होते हैं ये लोन के। बोले कौन कौन से? तो हमने कही पहले शिशु लोन होते, फिर होते दूसरों किशोर लोन और तीसरों तरुण लोन। तो अब जी बोली अब जो कहा है शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, उन्हें समझ में नहीं आई। तो हमने कही शिशु लोन, देखो जैसे शिशु छोटा

रहता ना, तो छोटे काम के शुरू करवे के लाने जो लोन मिलाते हैं। और फिर किशोर लोन, तो ए में कोनो काम मान लो चल रहो है और मुनाफा ओके ओके मानो बढ़ाने हैं, मुनाफा कमाने हैं और ज़्यादा, तो ओके लाने जो लोन मिला थे। और तरुण लोन जो होते वो बड़े स्तर पे धंधा बढ़ावे के लाने मिला थे। तो जिज्जी बोली इनमें कितो कितो पैसा मिला थे फिर बिन्ना? तो हमने कही शिशु लोन में देखो 50,000 मिला थे, किशोर लोन में 50,000 से 5,00,000 तक मिला थे, और तरुण लोन में 5,00,000 से 10,00,000 तक को लोन मिला थे। तो जीजी फिर तुरते ही बोली कि बिन्ना हमें तो 50,000 को दिलवा दो लोन, काहे किसे आवेदन और ये में कहाँ करने हैं कैसे करने हैं तो वो सब बातें तुम्हें बताने पड़े और तुम्हें ही चले जाइयो हमारे मोड़ा के संगे, तभी है नहीं तो और कौन करवे है। तो हमने कि बिल्कुल हम चले जे हैं, मनो जा बात ध्यान धरियोगी उसे बता दियो कि जरूरी दस्तावेज सोई लग हैं, जैसे अब को आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी जोन है, हाँ और एक दो फोटो सोई लगत हैं तो वो सोई रख ले है। तो जे जो न जो आवेदन है जो बैंक के माध्यम से हो जाए बस। फिर का किसान भैया रो, तो ये बातें हमने उन्हें सब बता दी और उन्हें सुन लई, और अब तो जे बातें बताए भाई और उनको काम धंधा शुरू भाव मुत के देना सोई हो गया है। लड़का ने डेरी खोल ली और लोन सोई उन्हें मिल गया, तो अच्छे से डेरी चलन लगी, मोड़ा को धंधा चलन लगो और जीजी के मोड़ा दोनों मतलब खुश हो गए, वो छोटो मोड़ा और जीजी सोई खुश हो गई और उनके घर में खुशियाँ आ गई।

देखो किसान भैया रो शंकर लाल पटेल भैया ने अपनी साथियों के संग जो सोई बता दो लोकगीत में कि ये समय लपटे चल रही हैं और घामो खूब हो रहा है और यही से किसान भैया रो पता दो चार दिन से हमें सोई हमारे हाथ गोड़े दर्द दे रहे हते सिर सोई दुखा था तो वो तो आप और से मुत के दिना होगा थे बतकाव करवे के काजे तो मन नहीं मानो तो हम आज आ गए आप और से बतकाव करवे के लाने। अब कल अब देखो चले जे हैं डॉक्टर भैया के पास कल हम जा कह रहे थे कछु दवा लिख दे हैं तो तना कच्चो लगन लगे मनो हमने इसे जा बात इसे बता रहे हैं कि आप और सोई अपनों और अपने मोड़ा मोड़ियन को ध्यान धरियो काहे के से हम बार बार कह रहे हैं और शंकर लाल पटेल भैया ने सोई कह दिए कि गाँव खूब है और तप रहो है बाहर लपटें चल रही हैं तो अपनो ध्यान धरियो काहे के से अब ये समय 9 बजे सवेरे से तेज घामो होने लगा थे सकारे सकारे या संजा के समय खेत चले जाए करने आप और दोपहरिया में जरूरी नहीं हो तो न जाए करने घर में आराम करे करने और अगर जरूरी निकलने भी पड़े तो का करने हैं अपनो पूरो ध्यान धरने हैं जैसे मुख है और सिर है जो गमछा है ना उसे बांध लो ढक लो एक दो प्याज जो है ना एक ठो प्याज जेब में रख ले करने भौजी से कह दे करने कि जेब में प्याज रख ले करें पानी खूब पीने हैं नींबू और पुदीना को शक्कर मिला के शरबत सोई पी ले करने पानी की कमी इस समय नहीं होने चाहिए और तब कहूँ घर से बाहर निकलियो काय के से लू लगवे से बड़ो डर होते और ऐसे ही भौजी हरों के सोई दोपहरिया में बिस्तर तान के सोने नहीं हैं सो जाएं मगर अपने मोड़ा मोड़ियों के सोई अपने संगे घर के अंदर रखें और फिर आराम करें सुनिए कि वे सो गई अभी बाहर गांव में भाग रहे थे होते तो भौजी हरों के सोई ध्यान धरने हैं। हाँ अब ऐसा कई बार कहो थे कि मोड़ा मोड़ी पानी में खेल रहे हैं कहूँ दोपहरिया में गांव में थे उते बागत हैं तो ऐसे में उनके सोई लू लगवे को डर रहे थे तबीयत खराब हो सकत है और एक नई परेशानी सोई खड़ी हो जाए तो बस यही से भैया भौजिया रो अपनों ध्यान रखने अपना मोड़ा मोड़ियों को ध्यान रखने और अब हमें चलवे को समय हो रहा हो काय के से अब हमें जाने हैं ब्यारी बनाने हैं हमारे घर वाले रेसाने बैठे हुए हैं काय के से झड़प हो गई है तो अब चलिए थे सभी किसान भैया भौजी जी जी हरों के सर लवेन्ना की राम राम जय जवान जय किसान। Thank you.

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बड़ी खुशी हुई।
1: शुभमय, आज के कैबिनेट मीटिंग में जैसा कि हमने देखा, कई ऐसे निर्णय लिए गए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आगे आने वाले वर्षों में या कहें समय में एक विकसित भारत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

0: है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है फॉर द अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इन्होंने बात की है कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। तो कैसे आप देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमें पता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि चारों ओर पूरे देश में खास करके, और उड़ान के बारे में भी हम जानते हैं, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको?
1: जैसे आप सही कह रहे थे जी कि ये सिर्फ वेस्टर्न इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि रेलवे के लिए नागपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे भारत के सारे रेल लाइन उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण से आके मिलते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए अगर हम जिससे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का आवागमन अगर हम देखें भारत के किसी जगह पे, तो इस क्षेत्र से वो जरूर होके गुजरता है। इसीलिए ये वाला सेक्टर को और ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर। तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है खासकर कार्गो एयरपोर्ट वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे। तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट जो नागपुर में बन चुका है 2009 से ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं और लोग जल्दी देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है।
0: जी शुभ मैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
2: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
0: और हम बात करते हैं, अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर वर्षा पर कितना ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें, उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड, जो कि लगभग 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सिसमम के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और 500 रुपये प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, 14 जैसा कि हमने पहले बात की कि 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
1: खासकर अब ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत बड़ी मात्रा में आ गया है। तो वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर मूंग इन सब

0: चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं, लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे, तो एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा।
1: जी
0: और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में ज्वार की, पैडी वगैरह का, तो ऑफकोर्स है क्योंकि धान पैडी भारत के
1: जी
0: वेस्टर्न जगह
1: जी
0: पे पैडी का
1: बाजरा है
0: कल्टिवेशन
1: जी,
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: बाजरा है, लेकिन साथ में जो दाल, दाल के जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स है, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है।
1: जी
0: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है, कितना परसेंटेज किया जा रहा है, उसका कितना बारीकी से करते हैं, खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का दृष्टि आकर्षण करूंगा कि हमारे सारे श्रोता के में खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है कि कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया। ये तुलना अगर करें
1: जी
0: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं
1: जी
0: उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो हैं, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इससे जुड़ा हुआ है।
1: जी जी शुभ मैं, और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के MSP का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स MSP, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभमय, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे, हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
1: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। शुभमय, कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में, जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक काफी बड़े तौर पर और बड़े पैमाने पर सामने उभर कर आ सकता है एज एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से।
0: मैं सबसे पहले बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली एक कोल से, हालांकि कोल और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मोर ऑर लेस वो एक ही चीज से बनता है, कोल गैसिफिकेशन

0: का मतलब है कि इसमें से एक मिक्स्ड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर, इन सबको यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है। तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात की बात कर रही है, हम इंपोर्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में अफरा तफरी की वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये
1: जी
0: कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करें ना करें। खासकर कुछ महीने पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एट ऑल करना चाहिए या नहीं। हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर, तो वो एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोल से जो उत्पन्न होता है जो पोल्यूशन, वो काफी हद तक उतर जाता है कोल गैस बनाने से। और जैसे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कोल का हमारे पास चूंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है, हमारे पास है देश में, तो हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने आप को जैसे कहते हैं सेल्फ सफिशियंसी इन एनर्जी में पा सकते हैं। और सेल्फ सफिशियंसी एनर्जी अभी इस दुनिया में ये 21वीं सदी का एक मूल मंत्र बन गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी, इस दोनों का मिश्रण देश के लिए एक जैसे कहते हैं एसेंशियल चीज बन गया है। अपने निर्भरता, अपने अपने इकोनॉमी को आगे तेजी से ले जाने के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी।
0: तो इसमें ये जो 37,000 37,500 करोड़ का जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट्स में आने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि आपको हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक एक सपोर्ट देंगे, इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए। और अगर हम आगे अगर चले तो दिस कुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
1: जी, शुभ है। और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में आज, गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
0: इसको अगर आप उससे अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है
1: जी
0: ये ढोलेरा से आ रहा है। ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन
1: जी जी
0: अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है। तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि
1: जी
0: बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र की कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक जिसे कहते हैं मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूरण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में ही बहुत जल्दी पता चल जाएगा,
1: जी
0: क्योंकि पूरा जो रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत है, जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: शुभ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है अजहर।

प्रेम रतन धन पायो। इस फिल्म का गीत आपने सुना पलक मुछाल, मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और साथियों की आवाज़ में। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत शान के स्वर में है, बोल समीर के संगीत, मोंटी शर्मा का। फिल्म का नाम है सांवरिया।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में अगला गीत जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की, फिल्म का नाम है दिल चाहता है।

गीत समीर का, संगीत अदनान सामी का, आवाज अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, फिल्म का नाम लकी।

0: सोनू निगम की आवाज़ में थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। बोल स्वानंद किरकिरे के थे और संगीत शांतनु मोहित्रा का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8:45 होने को है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसल

0: के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी

0: वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने

0: के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar.

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी

0: वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, इनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं।

0: लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया किस हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36 thousand metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता

0: आज ही बहुत बड़ी है, और आगे आने वाले दिनों में जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे

0: संबंध जैसे क्वाड के अंदर हैं उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर हैं। आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही है रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री के ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज

0: में प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफकोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लड़ से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति, वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध हैं और लॉन्ग टर्म संबंध हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: थैंक यू,
0: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।
6: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित जसराज का गाया राग मुल्तानी में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित जसराज का राग मुल्तानी में ख्याल गायन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, प्रणाम सिटी खंडवा से हैं यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा राजेश कुमार, अंजलि संदीप कुमार, माधुरी पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास सोनवणे, सुनीता खुशी, प्रियांश आशीष, पूनम और शुभम सोनवणे। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। जरुण वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब आडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक और युवराज। दोस्तों, रात के सबके लिए अलग अलग मायने होते हैं। कोई जैसे नर्म बिछौने पर सुख की नींद सोता है, तो कोई जैसे कांटों के बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। और आंखों की चौखट से कभी नींद हौले से आ जाती है, तो कभी दस्तक देके जैसे कहीं छुप जाती है। रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी।

घर फिल्म का यह नगमा आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। अगले गाने की फरमाइश करते हैं आप सब कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदेव बिरक और मीका बिरक, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयसा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, राउफ और शाहिद भाई,

निबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया, पाकिजा रोड वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, गीत शमीम जयपुरी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और फिल्म का नाम है राज़।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आई सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये नगमा, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार और युवराज साहू। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। और ये चिट्ठी देवरी भाटापारा की है। गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी।

शहदोल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, साकरा सोमनी, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतीन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू, अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूनम रोहित, छोटू और डुंडुन, अलीगढ़ डब्बाली से बसंत सिंह, चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रवि का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और फिल्म का नाम है नील कमल।

नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र और ब्रिजकांत सारथी। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सभाशेरे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। सारनाथ बनारस से बाबू यादव, श्री

श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश सीमा अन्नू और अरुणेश यादव, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणिता, अर्जुन गवाड़कर और बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का आखिरी गाना, इसे आवाज़ दी है आरती मुखर्जी ने, गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम है मासूम।

तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम मन भावन का आज का आखिरी गाना। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोता 10:30 बजे रात से इंतज़ार करते हैं, और उनका इंतज़ार कभी पूरा होता है और कभी नहीं भी होता है। बहरहाल, लाखों जागने वालों में से इस बात का एहसास कि कोई ख़ास भी जाग रहा है, दिल की तड़प को और बढ़ा देता है। इसी उम्मीद के साथ, इसी बात के साथ कार्यक्रम से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 11 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several

के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर विविध रंगीय कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि